0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: 68231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser Students Learning and Skills Academy.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: for your property, look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713six

0: 77 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने। मुफ्ता मशवरा लो जी।
1: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-021-07।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Aden.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
7: Attention!
8: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
9: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
10: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
9: सलासा ट्यूशन सेंटर?
10: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
9: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
10: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
9: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
11: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011-5916-8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
12: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul

0: Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
2: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वामी जी वकार एंड लिसनर्स ऑफ रेडियो 97.1 एफएम, हियर इज योर होस्ट नासिर खान प्रेजेंटिंग लाइव, डेफिनेटली लाइव शो, नेमली गुड मॉर्निंग जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंगम।

मित्रा बिल्कुल फिट फाट A1 और जनाब आपकी दुआएं हैं और ऊपर वाले की कृपा है, बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजरी। आप सुनाएं कैसे हैं आप सब लोग, वीकेंड कैसा गुजरा और वीक का स्टार्ट कैसा है?

जिन लोगों का वीक स्टार्ट अच्छा होता है ना, वो लोग थोड़े से स्वस्थ और एक्टिव तरीके से अपना जिंदगी गुजारते हैं और अपना नया जो अपनी नई सुबह है यानी आज के दिन से और मंडे के दिन से अपने आप को एक नए तरीके से लेके आगे चलते हैं। क्योंकि वीकेंड पे जो कुछ नाराशाएं या जिनकी आप कहते हैं उम्मीदें टूट चुकी होती हैं या सिर्फ ऐसी कुछ सिनेरियो होता है कि जिस सिनेरियो में थोड़े से अपनी प्लानिंग से हट चुके होते हैं, तो वो लोग एकदम अपने आप को रिकवर करते हैं और रिकवर करने के बाद जब नया वीकेंड यानी वीकेंड ख़त्म होने के बाद वीक स्टार्ट होता है तो फिर एक नए तरीके से नए जज्बे के साथ नए मोटिवेशन के साथ सामने लेके आते हैं अपने आप को। और फिर कहते हैं ना वो चक दे पट्टे ते नप दे गिली, फिर वो कंडीशन होती है वो अन्नी फेर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, इनको वॉरियर कहा जाता है बेसिकली। जैसा कि अक्सर आप जानते हैं ना कि जिंदगी में तीन किस्म के लोग होते हैं। खैर ये तो टॉपिक हमारा आज आगे आएगा, डिस्कशन करेंगे ना। टॉपिक ऑफ द डे में अनाउंस किए देता हूँ, आज का टॉपिक है गलती, मिस्टेक। मिस्टेक बेसिकली होती क्या है, गलती क्या होती है, रवैयों की गलतियाँ कैसी होती हैं, इंसानों की गलतियाँ कैसी हैं, किन गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, किन गलतियों पे ऊपर वाला अपनी पकड़ करता है और किन गलतियों को हम लेके सुधार सकते हैं और फिर हम कम से कम चांस ले सकते हैं अपनी लाइफ में चीज़ को सेट करने का पैशन के साथ और मज़ीद एक ऐसी जज्बे के साथ कि नहीं यार अगर ऐसी कोई चीज़ आपको फेवर के तरीके में भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे छिननी हो रही है कुछ हो रही है, तो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइमिंग आपके अलावा और कोई अदा नहीं कर सकता, तो फिर आपने वो जिम्मेदारी अदा करनी होती है। ये होती है जिम्मेदारी जो इसको अपनी लाइबिलिटी समझता है और ये समझता है कि यार आई हैव टू सिंसियर विद माई वर्क। सो जनाब अगर आप लोगों के भी ही विचार है, ऐसी सोच है गलती के हवाले से, तो अपने विचारों के साथ शेयर करें जनाब रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो में 0115 7100971। ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रابطہ करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आप लाइव कॉल भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फिर हम शामिल हो सकते हैं हमारे साथ अपने नए प्रोग्राम में आने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी सिनेरियोज हमारे सामने आएंगे जिंदगी के, कुछ आप मेरे साथ शेयर करेंगे, कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर इस तरह बनाएंगे एक नई सुबह को मज़ीद खूबसूरत और बेहतरीन।

जनाब यही थी ये आज का टॉपिक है, लेट्स डिस्कस टुडेज वेदर रिपोर्ट फर्स्ट, उसके बाद बाकी बातें भी बाद में होंगी। सो टुडेज वेदर रिपोर्ट इज आपको बताते चले कि टुडेज नॉटिंघमशायर टेम्परेचर रिकॉर्डेड 18 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, सनी इंटरवल एंड लाइट विंड्स। अगर आपको कहीं आगे पीछे बारिश के आसार कुछ नजर आते हैं तो घबराइएगा मत, ये बारिश के आसार कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी ईस्ट साइड से अगर आप देखें तो फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है जी हमारे पास 0%, और शाम 6 बजे तक आपके पास सनशाइन रहेगी, 16 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा, लेकिन ये वो टेम्परेचर नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ठंड फील करें। और आज रात के हवाले से मैं आपको हल्का सा बताता चलूँ कि टुनाइट विल स्टार्ट ड्राई एंड एक्सटेंसिवली क्लियर, ओवर नाइट थिक क्लाउड विल बिल्ड इन फ्रॉम द साउथ पॉसिबली ब्रिंगिंग अ फ्यू आइसोलेटेड लाइट शावर्स टू अ डॉन एंड टर्निंग अ लिटिल ब्रिजर, यानी आप कह लें कि ओवरऑल अ चिल नाइट विल बी अहेड। और इसके अलावा मैं आपको यह बताता चलूं कि व्हाट्सएप पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं

व्हाट्सएप के अलावा आप कैसे हमें ट्यून कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर आप FM पे हैं तो 97.1 दिस द हमारी स्ट्रीमिंग जो नंबर है, जो क्वांटिटी है या जो फिगर है वो ये है। इसके अलावा फ़ज़ा पे आप डैप पे आप हमें फ़ज़ा के नाम से सर्च करेंगे। इसके अलावा हमारी ऐप पे हमें सुनने के लिए आपने क्या करना है, आपने जनाब जाना है गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके आप टाइप करेंगे फ़ज़ा रेडियो या रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM ऑफिशियल, और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का या पेज कलर का या येलो कलर का माइक आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी, आपकी स्मार्ट होगी नज़र आपको बोलते हुए गुड मॉर्निंग, जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम।

हमारे बाकी जितनी ट्रांसमिशन हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं और जो भी हमारी कम्युनिटी वर्क है, उसके बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज़ radiofaza.co.uk। अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक, इन सब पे आप रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे और फिर शामिल हो जाएं हमारे साथ, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, मैसेज करने है और फिर एहसास दिलाना है अपने होने का।

तो सामीन ज़िवकार एंड लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट होते हैं जो अब ये जो सेगमेंट है बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन का और हल्के फुल्के ट्रैक्स का सेगमेंट है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग अपने काम की तरफ रवा दवा हैं और जा रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ, लेकिन अगर रस्ते में कहीं आपको ट्रैफिक का जैम मिलता है तो डेफिनेटली मुझसे इसी नंबर पर रब्ता कीजिए। जी नंबर है 01157100971। मुझे बताइएगा ताकि मैं बाकी लिसनर्स को बता सकूँ कि वे यू हैव टू स्टॉप एंड वेयर इज द डिटो, यानी आपने कहाँ से राइट लेफ्ट होना है या कहाँ से सिराते मुस्तकीम पे जाना है। लेकिन अगर आप चलते चलते कि स्टारबक्स या कोस्टा पे रुकते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो फिर एक कप कॉफी का मेरे लिए भी लीजिएगा, डबल एस्प्रेसो के शॉट, और अपने लिए कैपेचिनो, आई थिंक इज द बेस्ट टाइम। तो मेरे साथ इमेजिनेशन में आप एक कॉफी भी पी लेंगे, मैं भी पी लूंगा और जिंदगी को इंजॉय करेंगे। हमारे स्टूडियो में वैसे कॉफी और इन चीज़ों को पीना अलाउ नहीं है, बट ऑल इज वेल व्हेन बूटा इज हेल। एनीवे, ये तो हमारी गपशप है और तंज़ो मज़ाक साथ साथ चलता रहता है। गलती आज का टॉपिक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इंसान जब अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करता है तो सबसे पहले अपनी गलतियां कौन सी उसके सामने आती, मिस्टेक्स कौन सी, कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक से गलती हो जाती है। जब ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है, आपने इवेलुएट करना है अपने आप को, और उसके बाद इवेलुएशन में जब आप ये देखेंगे कि आपको किस जगह पर थोड़ा सा डार्क पॉइंट या थोड़ा सा वीक पॉइंट मिला जिस जगह पे आपने किसी से कोई मिसबिहेव किया, गलती जहाँ से सबसे पहले शुरू होती है सामीन वो होता है आपका मिसबिहेव। अब वो किसी के साथ भी आप करें, अपने बच्चों के साथ, अपने ड्राइवर के साथ, अपने किसी एम्प्लॉय के साथ, या किसी ऐसे क्रांतिकारी के साथ, या ऐसे सोशल वर्कर के साथ जो बेसिकली अब जिस माशरे में हम हैं, नॉटिंगम में, यूके में, इंग्लैंड में, यूरोप में, यूएसए में, कहीं भी, ये बड़े सिविलाइज्ड नेशंस हैं और हम भी यहाँ आके जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी, हम लोग काफ़ी सिविलाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने नेशन में जाएँ, अपने होमलैंड में जाएँ, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी, तो हम यूजली वहाँ जब जाते हैं तो इस तरह की गलतियाँ अक्सर करते हैं। हम थोड़े से क्या कहते हैं ना, उनको प्राउड हो जाते हैं और थोड़ी सी ना हमारी डिसरिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ से गलती शुरू होती है, यानी आपके अखलाक का जो दामन है, अच्छे अखलाक का दामन आपके हाथ से छूट जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती कहाँ तक मॉडरेट होती है, कहाँ तक मॉडिफाई होती है, कहाँ तक अपने आप को लेके चलती है, इसका फिनोमेना क्या है, स्पॉन्टेनियसनेस इसकी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन अभी हैं कुछ ट्रैक्स, ट्रैक्स आप इंजॉय कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम का अगला सेगमेंट विच इज पर्सनैलिटी ऑफ द डे, उसके बाद होगा फिजा आइडिया और 10 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद फिजा 97.1 FM, स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड, एंड योर होस्ट नासिर खान इज राइट हियर इन गुड मॉर्निंग नॉटिंगहम।

एंड यस दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. तो एंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक, ड्राइव में आपको बड़ा मजा करेंगे और गुड मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा स्वस्थ करेंगे. जरा लाइट ट्रैक जो होते हैं ना, जरा बारिश का मौसम हो तो उसमें फिर मैं चलाता हूँ ये ट्रैक, इट्स बेस्ट वन. पांच से छह मिनट के लिए एंजॉय कीजिए, इसके बाद हाइड होगी कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक के उस पर जब मैं आपके पास वापस आऊंगा तो हम फिर शेयर करेंगे पर्सनैलिटी ऑफ द डे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक आफ्टर द मैग्निफिसेंट ट्रैक एंड द कमर्शियल ब्रेक. Your host is right here. Good morning, Nottingham.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान नासिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम है जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम ये उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। आपको बताते चलें ऐप पे डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हमारे जनाब हमारे नहीं अपने गूगल प्ले पे और प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप सर्च बार में लिखेंगे फजा रेडियो या रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर का एक माइक, येलो कलर का फेस कलर डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कैसी है, कौन सा कलर आपको नजर आ रहा है उस पर आप जाएंगे और आप उसको जब डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे तो फिर प्ले करेंगे। उसके बाद मैं आपको सुनते हुए मिलूंगा। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम मैं नहीं बल्कि आप मुझे सुनते हुए मिलेंगे। मैंने सिर्फ ये चेक किया कि कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने एक्टिव लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

जी तो लिसनर्स, कुछ मैसेजेस आप लोगों के पढ़ने थे 01157110971, ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और मैं आपको बताता चलूं कि आप इसी नंबर पे जितने भी हमारे नॉटिंघमशायर के वासी हैं वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं लाइव व्हाट्सएप पे, ताकि मैं शामिल कर सकूं आपको अपनी लाइव ट्रांसमिशन में और आप भी हमारी गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का हिस्सा बन सकें। टॉपिक है जी आज का हमारी मिस्टेक, गलती। जब गलती पे हम बात कर रहे थे तो काफ़ी सारे विचार मेरे जहन में आए। कुछ अगर आपकी विशेष या कुछ टिप्पणी है आपकी मेरे साथ, या आपके विचार मेरे विचारों के साथ मिलते हैं तो फिर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। अगर नहीं मिलते तो फिर भी आप थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी होती है, अपना मेंटल लेवल होता है, अपना माइंड सेट होता है, लेकिन उस माइंड सेट के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं, या वो माइंडसेट आपकी प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में कहीं कोई कंसर्न तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई इंटरफेरेंस तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको हल्की सी भी नज़र आ जाती है ना, तो फिर आपका माइंडसेट थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, सटका हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप सटके हुए नहीं हैं। इंसान कभी कभार हमारे इस देश के प्रदेश में या प्रदेश के देश में जितनी परेशानियाँ, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब दो दो तीन तीन शिफ्ट्स में काम करना, और उसके बाद काफ़ी जगहों पे, मतलब हमारे जैसे कैबी हजरात हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में, एंड दे आर वेरी वेल सिविलाइज्ड, और यकीन करें कि इतने बेहतरीन तरीके से डील करते हैं हर पैसेंजर को कि कमाल हो जाता है। हमारे सिख भाजी कमाल करते हैं यार, जिस पंजाब से भी हैं आप लोग, कितने ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते हैं। कल का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं एक सिटी सेंटर में गया अपने NG8 से, तो वहाँ पर जनाब एक सिख पाजी मेरे साथ मौजूद थे, दलबीर पाजी, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे ट्यून अप करते हैं। और जब उनको बताया कि मैं ही नासिर हूँ, एंड ही वाज वेरी हैप्पी एनीवे, खैर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मतलब उन्होंने वेलकम किया, उसके बाद बिठाया, तो मैंने पूछा कि आप सब पैसेंजर्स के साथ ऐसा ही विहार करते हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात की। बात उनकी क्या थी, उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात की और कहा कि वीरे, इस दुनिया ते ने जाते सी की लै के जाना है, एक चंगी गल ही है जिहड़ी असीं आपां जबान तो कर सकने आ, माड़ी गल साडे कोल करनी हुंदी, जे कर भी लईए तो वह गलती समझ के अगला माफ़ कर देना है। यानी कितनी ज़बरदस्त सी बात की, और कितना ज़बरदस्त, एक ना बड़े मॉडर्न बंदे में ना कमाल का सूफीज़म था कि उन्होंने अपनी ये बात की कि मैं मतलब माड़ी बात ये कह लें कि जो उर्दू लिसनर्स हैं, जो हिंदी हैं, जो पंजाबी लिसनर्स हमारे नहीं समझते इन चीज़ों को, उनको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे समझेंगे तो सारे बंदे, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो फिर समझ लीजिए, मतलब कोई कमज़ोरी मेरी नहीं है, यानी सिर्फ ये कमज़ोरी है कि मैं कभी कभी गुस्से में बात कर देता हूँ, तो फिर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगला गलती समझ के माफ़ कर देता है, लेकिन 99% ऐसा नहीं होता, मैं किसी से बदतमीज़ी या बदतहसीबी नहीं करता, इवन मैं गुस्से में हूँ या जिस, मतलब जिस सिनेरियो में भी हूँ। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यार बड़ा हूँ यार, बात कर दिए तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, गलती होगी, लेकिन भाई गलती अक्सर अगला बंदा कहता है भाई गलती हुई तो हुई, क्यों क्यों आपकी गलती, यानी मिस्टेक आपकी गलती से क्यों हो चुकी है। लेकिन इंसान को थोड़ा सा ना कह लें कि हल्का सा थोड़ा सा ना बेंड होना चाहिए, किसी ना किसी जगह पे आपको लीन होना पड़ता है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ दिशाओं में भागते हैं या मुख्तलिफ जगहों को सर करने की कोशिश करते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके पास जब भी कोई अच्छी एक्टिविटी आए उस एक्टिविटी का रिजल्ट जो ओरिएंटेशन हो बेसिकली वो बड़ी पॉजिटिव और प्लस में हो, तो फिर आपके पास क्या लेवल आएगा, क्या सिचुएशन बनेगी जिस सिचुएशन के सामने आप अपने आप को रखेंगे और फिर अपनी गलतियों को देखेंगे। अगर एक भी गलती आप अपनी पकड़ लेते हैं, वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, वो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एडवर्टाइजमेंट की कोई डिसीजन हो सकता है जो गलत हो चुका हो, या आपका कोई ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से आपको सेल्स और मार्केटिंग में थोड़ा सा लॉस हुआ हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो फिर वो चीज़ें आपके सामने दोबारा आती हैं। वो लॉस बज़ाहिर आपके बिजनेस का लॉस नहीं होता, पैसे का लॉस पैसा इंसान कवर कर लेगा, माइंडसेट इंसान का इतना एक्टिव होता है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको ये पता है कि मैंने कहाँ से दोबारा अर्न करना है। एक्चुअली कहते हैं ना, टिकटॉक पे एक बड़ी फेमस रील चली थी पिछले दिनों में कि बड़े ज़बरदस्त एक मोटिवेशन स्पीकर है हमारे हिंदुस्तान के, जहन में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एंड ही इज़ स्टैंड अप कॉमेडियन एज वेल, ज़ाकिर, ग्रेट गाय। वो कह रहे थे, कहते हैं कि यार तुम लोगों को ये पता है कि जो नाकाम आदमी ना, मतलब जो जिस
जिसको लॉस हुआ होता है, जिसको नुकसान हुआ होता है, उसने अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर रहा होता है। जब वो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करता है ना, तो फिर वो क्या करता है, गलतियों का कफ़ारा अदा करते हुए वो ये सोचता ज़रूर है, वो ये समझता ज़रूर है कि मैंने किस किस जगह पे गलती की और उसका खुमियाजा मैं भुगत चुका हूँ या मैं भुगत रहा हूँ। अब होता क्या है, लेकिन जब वो भुगत चुकता है ना और अपने आप को दोबारा ट्रैक पे लाता है, तो वो फिर डबल स्पीड से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि रिवर्ट कैसे मारना है, क्योंकि जो पहले उसने किया था ना वो तुक्का नहीं था, वो भी उसकी मेहनत थी, उसकी काबिलियत थी, लेकिन गलतियां हुई, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। उसने उसको रिकवर किया और रिकवर करने के बाद जब उसने रिटर्न बैक किया तो इतने भरपूर तरीके से था कि दुनिया एक बार देखती रहेगी। और ऐसे भी हमारे जितने लेजेंड्स हैं, बड़े से बड़े, वो भी ऐसे ही करते हैं। इसलिए सामीन, अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए अपनी किसी भी जगह पर, तो आज के दिन के हवाले से क्या मोटिवेशन है हमारे पास, क्या सक्सेसफुल वे में जाने का तरीका है कि हमने अपने माइंडसेट को हल्का सा दोहराना है कि भाई गलती हुई है कहीं पे, गलती की जगह पे हुई है, वो पॉइंट आपने नोट करना है, उस पॉइंट को बीच में से निकाल लेना है, और जब आप उसको सुधार लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, समझ लेते हैं, या वक्ती सरकमस्टेंसेस आप क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपके पास मुख्तलिफ सिनेरियोस ऐसे होते हैं जो आपकी पॉजिटिविटी में जाते हैं, जो आपके हक में बैठ जाते हैं। और फिर जब आप उन सिनेरियोस को अपने साथ लेके चलते हैं, फिर कुदरत आपके साथ होती है, और फिर आपके पास ज़बरदस्त तरीके की ना एक मोटिवेशन होती है कि जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को आगे मैनेज करना है, गलती की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं फिर।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक। ये थी जनाब द ग्रेट मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी ऑफ हमारे जनाब निकोला टेस्ला की, और कितनी कठिन लाइफ गुजारी, कितनी जोखिम में से गुजरने के बाद इस व्यक्ति ने एक ऐसी चीज़ बनाई या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाई जिनको बाद में वो ऑन नहीं कर सका, लेकिन आज भी दुनिया ने जानती है, किताबों में, साइंस की किताबों में उनको पढ़ा जाता है। ये भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधार के ही सामने आता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ना अपने आप को दुनिया से हल्का सा अलहदा कर लेते हैं, और जब अलहदगी उनको मिल जाती है, यानी वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद उनके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक ज़बरदस्त जो ना मोटिवेशन आती है, वो ये आती है कि फिर वो दुनिया को अपने साथ लेके चलने के काबिल हो जाते हैं। फिर उनकी कही वही बात कोट कहलाती है, उनकी मिसालें बनती हैं, उनकी यादें नहीं बनती। और जब लोगों की एग्जांपल्स मिसालें बनना शुरू हो जाएं तो फिर लोग नायाब हो जाते हैं। उन लोगों को नायाब होने से बचाने के लिए फिर कुदरत कुछ फैसले लेती है, फिर कुदरत उनको अपने पास बुला लेती है। लेकिन उनकी जो गलतियाँ होती हैं, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं, उनको एज अ निशानी, एज अ साइन छोड़ दिया जाता है, ताकि अगले आने वाली नस्लें उन गलतियों से सीख के ज़माने को एक नए रंग से चला सकें। ये सारी कुदरत का निज़ाम है, और जब ऊपर वाला कहता है कुन, तो हर चीज़ हो जाती है फैयकुन। और जब ये चीज़ें हमारे जहन में उतरती हैं, हमारी अकल के पर्दों से टकराती हैं, और फिर उसके बाद कुछ न्यूरॉन वो आइडियाज़ लेके बॉडी पार्ट के पास जाते हैं, और हर ऑर्गन को, अज़ा को ये कहते हैं कि अब तुमने यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। जब उनको डाइवर्ट किया जाता है ना, तो उसके दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका मेन जो होता है ना दिमाग के काम के बाद, आपका दिल होता है कि कितना पाक और कितना साफ़ है, ताकि जो ऑर्गन्स आपका काम कर रहे हैं, जो न्यूरॉन आपके पैगाम लेके जा रहे हैं, उन ऑर्गन्स को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं आपके दिल।
1: Commercial time. Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक फदा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिफ खान आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम। ये वेलकम है जनाब उन लोगों के लिए, उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे। एक और ज़बरदस्त सी चीज़ है, मज़े की चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा फ़ज़ा आइडिया है, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट है। अभी कमर्शियल ब्रेक हमारे दरमियान आई थी और जब किसी बात की पेस चल रही होती है, बात बन रही होती है, तो फिर दरमियान में कमर्शियल ब्रेक हायल होती है, फिर मैं कनेक्ट करना पड़ता है वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो जनाब ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की, मुझे याद रहे कि मैंने क्या कहा था। डेफिनेटली याद रहेगा क्योंकि मैंने आपको देनी है इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हमारे दरमियान रहेगी और एंटरटेनमेंट तो साथ साथ चलती रहती है।

जी बिल्कुल, बात में ये कर रहे थे कि जब ऊपर वाला कुछ ऐसे सिनेरियोस बनाता है, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि इंसान बे इंतहा मेहनत करता है, अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, या ये सोचता है कि अगर मैं मज़ीद क्रिएटिव हूँ या मज़ीद अपने आप को आगे लेके जाऊँ तो सरकमस्टेंसेस कैसे होंगे, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे लोग आपके साथ ताउन करेंगे या नहीं करेंगे, इंसान को हर वक्त खदशात रहते हैं। वजह यह कि उन खदशात की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे जो मेंटली लेवल पे जो न्यूरॉन जो एक्टिव होते हैं ना, वो डेड हो चुके होते हैं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर न्यूरॉन के पास कोई ऐसा अपने जैसा व्यक्ति नहीं होता जिसको वो मैसेज पास कर सके कि ऑर्गन को देखे, और जिसकी वजह से हमें सुस्ती आती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या निढाल हो जाते हैं, निढाल होकर गिर जाते हैं। फिर हम जब फ्रेश हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और फिर हम जो भी काम करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है।

तो इसलिए ना आप कहते हैं ना कि जब आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट हो, जब आपके पास अच्छा सिनेरियो हो, जब आपके पास खूबसूरत किस्म की खुशकिस्मती अच्छी सी हो, कहते हैं ना कि जब जो खुशकिस्मती होती है वो आपकी किस्मत के दरवाजे पे, यानी आपके लक के डोर पे बड़ा हल्का सा नॉक करती है, और बदकिस्मती उस वक्त तक नॉक करती रहती है जब तक आप दरवाजा खोल नहीं लेते।

तो अक्सर हमारा जहन उलझ जाता है, सुलझ जाता है और कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो गलतियां इंसान की बेसिकली ना कुव्वत मुदाफ़त से यानी रेजिस्टेंस पावर से बियंड होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आपका माइंड सोच लेता है कि इवेलुएट कर लेता है और आप खुद इवेलुएट कर लेते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उन गलतियों को निकालें अपने अंदर से, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो गलतियां आपकी रिकवर नहीं हो सकती, जो गलतियां आपको हमेशा ये एहसास दिलाती रहती हैं, पिन करती रहती हैं कि यार हेयर यू आर रॉन्ग। और जब वो पोजिशन सामीन आपके पास आ जाती है ना, तो फिर एक एम्बेरसमेंट, एक परेशानी, एक पेशेमानी इंसान के पास हमेशा रहती है। वो गलतियाँ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हैं ना कि अब वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए, किसी और इंसान के साथ आप किसी की मतलब ऐसी दिल आजारी ना करें कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ा नुकसान दे बैठा है, अपनी ज़िंदगी को बहुत महंगा कुछ सदमा पहुंचा दिया उसने, अगर वो आप देख लेंगे, क्योंकि सामने जब इंसान 40 या 45 अबव जाता है ना, तो फिर उसको अपने पीछे किए हुए सारे जो है ना कांड वो याद आते हैं, और जब ये सारे उसको कांड याद आते हैं तो बेसिकली उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है उसको फिर वो अपने डेफिनेटली अपने मालिक की तरफ रुजू करता है, तौबा करता है, ताइब करता है, लेकिन वो एम्बेरसमेंट उसे हमेशा खाई जाती है कि यार फलां जगह पे मैंने फलां बंदे से ज्यादती की, मैंने गलत कर दिया और अब गलती के बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, ये दूर जा चुका है कि आप उससे मिल नहीं सकते। इसीलिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी दिल आजारी होती है या आप दिल आजारी करते हैं, तो फौरन ही उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लीजिए। अगर वो थोड़ा लंबा सोचेगा ना, सबसे खामोश समीन, अब ये टॉपिक डिफरेंट है, गलती जो होती है वो बेसिकली किस तरफ लेके जाती है चीज़ को, हाँ ये चौथा पहलू है इस चीज़ का, गलती बेसिकली बददुआ की तरफ लेके जाती है किसी इंसान को। अब तो अगर इंसान उस पाए का है जिसके सामने आपने कोई गलती की है, जिसका आपने दिल आजारी की है, गलती से बद अखलाकी हो गई है, या कोई फाइनेंशियल लॉस दिया आपने, या आपकी बातों से, या आपका कोई पुराना रिलेशन ऐसा उसके साथ है कि पहले आप भाइयों की तरह थे, फिर बाद में आपके रिलेशन थोड़े से डिफरेंट हो गई, या उस रिलेशन को आप मेंटेन नहीं कर सके, और फिर ऐसा होता है कि करंट सिनेरियो में वो आपके बॉस है, वो आपका दोस्त नहीं रहा, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ और, होता कुछ और है, फिर उसमें फिर काफ़ी सारी झिझक आ जाती है, फिर काफ़ी सारे एक बहुत ना दीवार बनती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो इतनी गहरी होती जाती है कि आप एक साइड पर सोचते रहते हैं कि किस जगह पर गलती हुई, और वो गलती आपकी परफॉर्मेंस मुतासर कर रही होती है, लेकिन अगले बंदे के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो उस गलती को बता सके या आपको चांस दे के, नहीं यार तुम रिकवर करो, कि मैं जिस पर्सन को जानता हूँ वो ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई इंसान है, तो फिर इन गलतियों से पहले ही उसके साथ क्या कहते हैं मुठभेर ना कीजिए, उसके साथ बैठिए, टेबल टॉक कीजिए, डिस्कशन कीजिए, किसी जगह पर वो अपना गुस्सा रिकवर करेगा, रिस्पेक्ट देगा आपको, रिस्पेक्ट के लेवल पे ले जाएगा, और हर वक्त वो इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर आपसे गलती किसी जगह पे हो चुकी है, तो फिर उससे पूछें ज़रूर कि यार व्हाट इज़ द लॉजिक, मुझे समझा दो। हो सकता है वो काफ़ी ऐसी जगहों पे खामोश हो गया हो, जिसकी वजह से आपके सरकमस्टेंसेस थोड़े से टफ हो गए हों, आपके ऊपर जो हालात हैं वो टफ हो गए हों, क्योंकि बददुआ जो होती है ना खामोशी की, और समीन ये अर्श हिला देती है। एनीवे ऐसी गलतियों से परे रहिए जनाब। इस वक्त बात करते हैं हम क्रिएटिविटी की, और आज का जो मेरा फ़िज़ा आइडिया, बड़ा ज़बरदस्त फ़िज़ा आइडिया, और इस फ़िज़ा आइडिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है,

0: मूलभूत चीज ये है कि जनाब हम ज्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, हाउ वी कैन बी मोर क्रिएटिव। तो इसके लिए जनाब ये जबरदस्त हमारे पास फजा आइडिया है, इस फजा आइडिया को सुनिए, हाउ लिमिट्स कैन बूस्ट योर क्रिएटिविटी। तो सुनिए जबरदस्त इस आइडिया को, रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। और इस आइडिया को उस पार आपसे थोड़ी सी गपशप रहेगी, कुछ टॉपिक को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम को डिस्कशन के एंड में लेके आएंगे और उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। लेकिन ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।
1: In quarantine.
2: Because out of limitations comes creativity.
3: Dr. Seuss wrote using no more than 50 different words.
4: Locked in a house, locked with a mouse.
2: Shakespeare wrote King Lear in quarantine.
5: Necessity is the mother of invention.
2: Comfort is the enemy of progress. I love that.
3: It's a nice myth to think of creativity as an endless open field of possibilities. But the reality is when people face such a wonderful open field, they might become paralyzed. Constraints are the anchors of creativity.
6: The growth of the human brain is by growing branches. By growing branches, you can make more connections. And it's by having connections that you can say, aha. Now, there's an interesting issue over whether constraints are actually beneficial or problematic for creativity. And I think the answer to both is yes. Both cases happens to be the case.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
8: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
7: फजान 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। वेल, उम्मीद करते हुए आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा। सो जी आगे बढ़ते हैं, यानी कि टीवा डायलॉग का ये सफ़र मजीद आगे बढ़ाते हैं। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सो आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी खूबसूरत से एहसास के किर्द घूम रहा है, जो कि है खुद को वक्त देना। खुद को वक्त देना सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद को समझना, संभालना और बेहतर बनाने का नाम है। तो जहाँ कहीं भी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसीलिए चंद लम्हात निकालिए, आराम से बैठिए और मेरे साथ इस खूबसूरत सी गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। सो बेसिकली हम सब की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, घर की जिम्मेदारियाँ, काम, पढ़ाई, रिश्ते, दोस्त, सोशल मीडिया और ना जाने कितना कुछ। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने कभी खुद से पूछा कि मैं कैसी हूँ? अक्सर हम दूसरों से पूछते हैं आप कैसे हो, लेकिन खुद से ये सवाल करना भूल जाते हैं। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदना या फिर इस्तेमाल करना नहीं होता। कभी कभार सेल्फ केयर सिर्फ ये है कि आप खामोशी से बैठे रहें, अपना पसंदीदा ट्रैक सुने, अपने पसंद की किताब पढ़ें, अपने दिल की बात सुने और उस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात बिताएं जो आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके दिल के बेहद करीब हो। सो वेल लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात पर आप अभी अपना फ़ोन उठाइए और किसी ऐसे शख्स को टेक्स्ट कीजिए जो आपके दिल के बेहद करीब है, लेकिन फ़िलहाल के लिए है आपके पास से थोड़ा सा दूर। सो उसे टेक्स्ट करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है और वो आपकी ज़िंदगी में कितना स्पेशल है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग दूसरे लोगों को ये चीज़ बताते हुए इतना हेजिटेट होते हैं कि वो लोग उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती और मैं उन तमाम तरह लोगों को ज़रूर बताती हूँ जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो शख्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो इस बात को समझे, जाने कि वो मेरे लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है। सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। सवाल हम बात कर रहे थे खुद को वक्त देना, सो उसी में ये चीज़ भी आती है कि कभी कभार आप फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, क्योंकि इंसान को ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चाहिए। कभी कभी इंसान को दूसरों को समझना चाहिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अहमियत देनी चाहिए, अपने अंदर की थकन को भी समझना बेहद ज़रूरी है। सो इस खूबसूरत से टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे गपशप करेंगे, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से आप खुद को वक्त दे सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं, अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश मौसूल हुई है। सो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने लिसनर्स को कभी भी निराश नहीं करते। सो आप सबकी भरपूर फरमाइश पर प्ले करते हैं ये खूबसूरत ट्रैक। ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन ये गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा।

वेलनेस कहा जाता है कि कुछ एहसास अल्फाज से नहीं मौसीकी से बयां होते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं अपने उन अल्फाज को इन खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स के थ्रू। तो बस इसी तरह से अपनी खूबसूरत खूबसूरत सी रिकमेंडेशंस को हम तक शेयर करते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है और प्रोग्राम में भी रौनक लगी रहती है, साथ ही साथ कुछ अलग, कुछ नया, कुछ मुनफरिद सुनने को मिलता है। सो वेल लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मजीद हम अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि है खुद को वक्त देना, क्योंकि इस भीड़ में, इस शोर शराबे में, इस हलचल वाली ज़िंदगी में हम जो चीज़ स्किप कर देते हैं वो बस यही है कि हम खुद को ही समझ नहीं पाते। हम दुनिया की हर चीज़ को तवज्जो देते हैं, अपने आस पास की कम्यूनिटी को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, हर जगह को, लेकिन जो चीज़ हम स्किप करते हैं वो है हमारा खुद का सेल्फ। सो बस इसलिए हमने आज को मौजूद गुफ्तगू बनाया है, सो इसके ऊपर मजीद गपशप करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ हमारे वो तमाम दर लिसनर्स जो कि इस वक्त घरों से बाहर निकल चुके हैं, सो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं या फिर अपनी डेस्टिनेशन के आसपास पहुँच चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफ़र, ये मंजिल, ये डेस्टिनेशन बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत, सो आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत आवाज़ों के संग। सो वो खूबसूरत आवाज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? एज़ यूजुअल रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पे। सो जल्दी से फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून करें, वहां पर हमारा साथ दें, साथ ही साथ इस गुफ्तगू का हिस्सा बने 01157100971 के थ्रू। और हाँ, आप सभी के लिए एक हमदर्दाना सी एडवाइस है टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग मी राइट नाउ थ्रू रिवर डायलॉग, के जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो बी केयरफुल, बी फोकस ऑन योर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। और मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि अपनी तमाम तर फिक्रों को खुद से आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि आप जो टास्क अभी परफॉर्म कर रहे हैं ये बेहद मुश्किल है। सो सीट बेल्ट बांध के रखा करें और स्लो स्लो ड्राइव किया करें, कभी भी फ्लेक्स के चक्कर में या फिर जस्ट शो ऑफ या फिर कहीं जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। वेल लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अभी एक अदद का कमर्शियल ब्रेक का, सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। आप जहां कहीं पर भी मौजूद हैं बस आपने यहीं रहना है। आप सुन रहे हैं डीवा डायलॉग, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा, और हम बस यूंगे और यूं आए।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दीवा डायलॉग और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। सो वेल लिसनर्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है खुद को वक्त देना, यानी कि सेल्फ केयर करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को समझना। सो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको हर वक्त मजबूत नजर आना जरूरी नहीं होता, कभी थक जाना भी इंसान की अलामत है। कभी कभी दिल चाहे तो आप आराम कर ले, कभी नहीं कहना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी को खुश करते करते अगर हम खुद ही ना खुश होने लगे तो फिर इस ज़िंदगी का तवाज़न बिगड़ सकता है। अपनी हदूद को समझना भी सेल्फ केयर है। हर मसला आपका हल करना ज़रूरी नहीं होता। सो कभी कभी हर इंसान को जवाब देना भी इसी तरह ज़रूरी नहीं होता, और हर बात को दिल पर ले लेना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का एहसास करें, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ को भी ध्यान दें कि आप क्या खुद के लिए भी उस तरह से सोच रहे हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर रोज़ हर दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, बेहद इम्पोर्टेंट हैं, सो इस चीज़ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने इतने घंटे उन लोगों को दिए, तो क्या इनमें से चंद लम्हात आप खुद को भी दे पा रहे हैं या नहीं। सो ये बेहद ज़रूरी है, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो कि इंसान के सेल्फ केयर में बेहद ज़रूरी होती हैं। सो वेल लिसनर्स, अब जरा आपसे कुछ बातें हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैंने आखिरी बार अपने लिए कब वक्त निकाला था। सोचिए, कल, गुज़िश्ता हफ्ते, या शायद आपको याद भी नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं तो शायद यही वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज लें, छोटा सा ब्रेक लें। आप हमें अपनी राय, अपना पैगाम या अपनी गुफ्तगू पहुँचा सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप नंबर। सो 01157100971 है मेरा और आपका रबते का नंबर। सो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम सेल्फ केयर कब की थी, आपने खुद को तवज्जो कब दी थी, और ऐसा कोई लम्हा याद करें जहां आपने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया हो, आपने अपनी पसंदीदा किताब पढ़ी हो, या फिर अपने मज़े की कोई रेसिपी ट्राई की हो, खुद के साथ बातें की हो, या फिर इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया हो कि किस तरह से आप खूबसूरत दिख सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि डीवा डायलॉग सिर्फ मेरा शो नहीं है बल्कि है आपका अपना प्रोग्राम। ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ दिन अच्छे भी होते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है मेरी और आपकी लाइफ में कि कुछ दिन उस तरह से नहीं होते जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया होता है। कभी खुशी होती है तो कभी गम। सो कुल मिलाकर इन्हीं दोनों चीज़ों का पैटर्न बनता है हमारी ज़िंदगी। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बगैर किसी खास वजह के भी दिल उदास हो जाता है। ऐसे वक्त में खुद को बुरा भला कहने के बजाय आप खुद को थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, खुद को थोड़ा वक्त भी दे सकते हैं। आप अपने आप से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप किसी बहुत ही अजीज दोस्त से बात कर रहे हों, और याद रखिए आप भी त्वचा, सुकून और एहतराम के मुस्तहिक हैं। चलिए इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत सा ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है और अभी अभी हमें फरमाइश मौसूल हुई है। और आपको मालूम है कि डीवा डायलॉग का फर्स्ट स्लोगन है कि हम अपने सभी लिसनर्स का ख्याल रखते हैं और उनके पसंदीदा ट्रैक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सो मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं दीवा डायलॉग और मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे ज़ैनब फातिमा। सो वेल लिसनर्स, दोबारा से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, उससे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि हम खुद को किस तरह से समझ सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और इस बात के लिए कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपने खुशी को भी अहमियत कैसे दे सकते हैं। सो अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम हर चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं। कोई काम दे तो हाँ, कोई कुछ बोले तो हाँ, कोई अपनी मर्जी हम पर डालने की कोशिश करे तो हम स्टिल कह देते हैं हाँ ओके ठीक है। लेकिन याद रखिए, नहीं कहना बदतमीजी नहीं। कभी कभार आपकी अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिनको आपको वैल्यू करना बेहद ज़रूरी होता है। तो उस सेंस में अगर आप किसी को इनकार कर देते हैं किसी चीज़ से, किसी बात से, सो इट डजेंट मीन कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि आपकी वजह से कोई दूसरा खुश नहीं हो रहा। बट समटाइम्स यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ओन बाउंड्रीज, क्योंकि जो लोग खुद की बनाई हुई हदूद का ख्याल नहीं रखते तो स्टिल लोग क्या करते हैं कि जस्ट बस उनको यूज़ करते चले जाते हैं। वो लोग बस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमेशा हमें हाँ करेगी और ये कभी भी हमें इनकार नहीं करेगी। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर रूल्स। आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते, आपकी अपनी ज़िंदगी भी है, अपने तजुर्बात भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको वक्त देना ज़रूरी है। इसीलिए जहाँ ज़रूरत हो एहतराम के साथ आप कभी कभार ना कह दिया करें। अगर आपको लगता है कि ये काम आपके बस से बाहर है या आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आप खुद को वक्त नहीं दे सकेंगे, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे, तो आप सिंपली ना कह दें। ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी को ना कहते हैं। हाँ, हो सकता है कि वक्त ही सामने वाले को बुरा लगेगा, बट बाय द टाइम ही शी रियलाइज के यू आर राइट। सो आज की हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया भी बन चुका है, जो कि हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। तो अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि जहाँ हम खुद को समझें, खुद को वक्त दें, वहीं सोशल मीडिया हमारी रियल लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो आजकल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया है। हम दूसरों को पिक्चर्स शेयर करते हैं, कभी कभार दूसरों की पिक्चर्स देखते हैं, उनकी कामयाबी देखते हैं, उनकी खुशियां देखते हैं, और फिर कभी कभी अपनी ज़िंदगी को उन तमाम तर लोगों से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बट याद रखिएगा कि सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली हर चीज़ मुकम्मल ज़िंदगी नहीं होती। हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है, इसीलिए दूसरों के चैप्टर को देख के आप कभी भी खुद के चैप्टर को कमतर मत समझें। आप ये मत समझें कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेकार है या आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक मैंने सोशल मीडिया पे जो तमाम से चीज़ें देखी हैं, अगर कह लो कि वो इंस्टाग्राम पोस्ट हैं या फिर यूट्यूब व्लॉग्स हैं, तो आई फील लाइक कि दे ऑल आर द फेक पर्सपेक्टिव। वो तमाम से चीज़ें फेक होती हैं, क्योंकि बाय द टाइम आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन तो हर मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे फोटोग्राफी का शौक है, सो मैं पार्ट टाइम फोटोग्राफी भी करती हूँ। सो वेल लिसनर्स, जब मैं फोटोग्राफी करती हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो आपको लगता है कि वाओ इनकी पिक्चर्स कितनी प्यारी हैं, द बैकग्राउंड वाज सो मैजिकल, सो वो बैकग्राउंड उनको बना बनाया नहीं मिलता। समटाइम्स इन्फ्लुएंसर्स वो बैकग्राउंड खुद क्रिएट करते हैं, समटाइम्स वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो आपको बेहद इमेजिनरी लगता है। सो इस वजह से आपको लगता है कि ओ वाओ इनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बट हमेशा कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर मत करें, क्योंकि आपने उनकी स्ट्रगल्स नहीं देखी, आपने उनकी डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखी। ठीक इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं, सो कभी भी इग्नोर मत किया करें और सोशल मीडिया को खुद पर सवार मत किया करें। सो वेल लिसनर्स, इस टॉपिक के ऊपर तो गुफ्तगू साथ ही साथ चलती रहेगी। अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। सो प्रोग्राम में इस पक्ष में करते हैं एक अदद खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक भी वो जो कि हमारी प्यारी सी लिसनर ने हमें रिकमेंड किया है। सो आपको पता है कि लिसनर्स की तमाम तर बातों को हम भरपूर तवज्जो देते हैं। सो ट्रैक की उस पर होती है आपसे मुलाकात।

सो वेल लिसनर्स, दोबारा से वापस आते हैं अपने उसी गुफ्तगू यानी उसी टॉपिक की जानिब। सो आज हम एक छोटी सी बात करते हैं और मैं आपसे भी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। सो माय डियर लिसनर्स, अपनी ज़िंदगी में आप खुद को खुद ही प्रायोरिटी हमेशा दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नज़रअंदाज करें, इसका सिंपली मतलब ये है कि सिर्फ आप दूसरों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना मत भूलें। अगर आप थक गए हैं तो आराम करिए, अगर आप परेशान हैं तो किसी काबिल एतमाद शख्स से गुफ्तगू कर सकते हैं, और अगर आपका दिल कुछ नया करने को चाहता है तो आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये भी सेल्फ केयर का हिस्सा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इनोवेशन लेकर आएं, कुछ न्यू चीज़ों को ट्राई करें। और अगर कोई चीज़ आपको अंदर से खुश करती है तो वो महफूज और मस्बत तौर पर आप उसे संभाल कर रखें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर अवकात के जो चीज़ें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं, अक्सर अवकात जब हम वो तमाम सारी चीज़ें दूसरे लोगों से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि ईवल आइज एलिमेंट हो जाता है। सो आप कोशिश किया करें कि जो चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद स्पेशल है, आप उसे हाइड रखें दूसरों से, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कीप इट प्राइवेट। इससे ये होता है कि आप अपनी स्पेशल चीज़ों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने का नाम नहीं है, ज़िंदगी को महसूस करना बेहद ज़रूरी है। सो ज़िंदगी को महसूस करें, खुद का ख्याल रखें और खुद का एहसास करें। अच्छा, मैं आप सबसे ना कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि वी आर अ फैमिली। और एज अ आर्ट से दीवा डायलॉग का ये जो प्रोग्राम है, ये ना सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि हमारे तमाम सारे लिसनर्स इससे महसूस हों, बल्कि हमने इस प्रोग्राम को इस तौर पर डिज़ाइन किया है कि हम अपने लिसनर्स के दिल का हाल जान सकें और साथ ही साथ उनसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आपको मालूम हो कि किस तरह से आप ज़िंदगी में डिफरेंट मौजूद को टैकल कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों को खुद ब खुद चेंज कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं जिनसे मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब आप खुद को वैल्यू करते हैं तो सोसाइटी आपको किस तरह एक डिफरेंट परसेप्शन के तौर पर देखती है। सो व्हेन आई वाज इन अ यूनिवर्सिटी एट स्टार्टिंग पॉइंट, सो मैं उस वक्त खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। आई यूज़ टू हैव अ सिंपल नो स्किन केयर रूटीन, नो फैशन, नो ईच एंड एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता था कि जस्ट कि मैं अगर अपने काम से काम रखती हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हो, आप प्यारे दिख रहे हो या आप किस तरह से भी दिख रहे हो। और मैं क्या करती थी, हमेशा दूसरों का एहसास करती थी। जो लोग मुझे आकर कोई भी काम कहती थी कि अच्छा ज़ैनब ये कर दो, सो मैं सिंपली कहती थी ओके फाइन मैं कर दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यह कोई बुरी बात नहीं है। बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि जब मैं लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही हूँ तो इस बीच लोगों ने मुझे वैल्यू करना बिल्कुल छोड़ दिया है। लोगों को लगता है कि शायद कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि किसी के साथ भी इजीली कंफर्टेबल हो जाती है, विच मीन्स कि मुझे उसको अगर इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं। सो आई रियलाइज कि अगर मैं खुद को खुद ही वैल्यू नहीं कर रही, इसी वजह से तमाम तर लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है। सो एट दिस मोमेंट आई चेंज माई सेल्फ अलॉट, आई बिकम अ, मैं ये नहीं कहूँगी बट आई यूज़ टू थिंक कि मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए, स्किन केयर करनी चाहिए एंड लुक प्रेजेंटेबल। सो उसके बाद मैंने खुद को बता लोगों से बातचीत करना कम कर दी और हमेशा इस चीज़ को प्रेफर किया कि जो काम मैं ईजिली कर सकती हूँ वो तो चलो मैं करूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो कोई मुझे देता है और वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है तो मैंने सिंपली उसको मना कर दिया। मैंने कह दिया कि ओके सॉरी मैं नहीं कर सकती। आई नो कभी कभार दूसरे लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम बस उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब आप एक दो मरतबा मना करते हो, आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज़ होता है। सो एक बहुत ही फनी सा मोमेंट हुआ था मेरे साथ, सो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो वन डे आई केम टू द यूनिवर्सिटी एंड मैं एक सीट पर बैठ गई, ठीक है, एंड रैंडमली समवन सेड कि ये तो किसी और की सीट है, आपकी सीट नहीं है। सो आई सेड ओके फाइन मैं किसी और जगह बैठ जाती हूँ। मैं वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाके बैठ गई और जब मैं वहाँ बैठी तो समबडी टोल्ड मी कि ये भी किसी और की जगह है। सो
अब मेरी जगह पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो बैठ गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ. पर जब मैंने दो जगह बैठने की कोशिश की और लोगों ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, सो मैं सिंपली अपनी जगह पे गई और मैंने उस लड़की से कहा कि ये मेरी जगह है, आप अपनी जगह जा सकती हैं. और वो लड़की सिंपली चुप करके उठ के चली गई. सो ये एक सिंपल सा एक्ट था, बट इस एक्ट से मुझे मेरी जगह तो मिल गई. अब अगर मैं हेजिटेट करती रहती या मैं सोची रहती उसको बुरा लगेगा, तो मैं कभी भी खुद की जगह हासिल ना कर सकती. सो लिसनर्स, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आप सभी के लिए कि इसी तरह

0: can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। सो द लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 एफएम पे। सो वेल लिसनर्स, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा से भी ज़्यादा, यानी कि ये गुफ्तगू करते करते वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और कुछ इसी तरह से होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से किसी से हम कलाम हो रहे होते हो तो आप बातें करते चले जाते हो, वक्त गुजरता चला जाता है, और ठीक इसी तरह से बस पता ही नहीं चलता कि कब वक्त इख्तिताम को पहुँच जाता है। सो डेली हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही होती

हूँ और मैं दिल ही दिल में सोच रही होती हूँ कि अभी मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब भी बातें कर रहे होते हो तो बिल्कुल भी एहसास से नहीं होता और लास्ट में मुझे मालूम होता है कि प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि साथ ही साथ आप सबकी फरमाइशों को भी प्रोग्राम में शामिल करना होता है, तो इस बीच बातचीत का इस कदर मौका नहीं मिल पाता। सो वेल लिसनर्स, अभी हमारी एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि एक न्यू ट्रैक इस वक्त मार्केट पे रिलीज हुआ है। ट्रैक का नाम है रंगीन और इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग जिसे गाया है हसन रहीम ने। सो वो चाहते हैं कि हम इस खूबसूरत ट्रैक को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सो क्यों नहीं, ज़रूर, जैसा कि हमेशा से हम आपकी फरमाइशों का ख्याल रखते हैं तो अभी भी रखेंगे। सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात।

सिर्फ लिस्टर कैसा लगा आपको यह खूबसूरत सा ट्रैक? वेल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा था और हमेशा से ही कोक स्टूडियो का ये सिनेरियो रहा है कि वो हम सब के लिए बनाता है काफ़ी अच्छे अच्छे गाने। और मज़े की बात ये है कि कोक स्टूडियो के जो ट्रैक्स होते हैं उनमें आपको एक बहुत ही अच्छा ह्यूज कोलैब देखने को मिलता है जो नॉर्मली आपको ट्रैक्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो वेल इट्स अ रियली प्रीटी गुड सॉन्ग। सो वेल लिसनर, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है खुद को समझना, खुद को वक्त देना और खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। सो इसमें ही एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट मुझे मिला, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी अपने लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। सो कभी कभार ऐसा होता है कि आप दूसरे लोगों को वैल्यू करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अपनी एक लाइफ एग्जांपल भी शेयर की कि किस तरह से जस्ट मैंने कुछ चेंज लाया अपने अंदर और लोगों का परसेप्शन काफ़ी हद तक तब्दील हो गया। सो इसी तरह से रियल लाइफ में भी होता है, जब आप कभी कभार दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं तो आपको हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिट्रेयल का सामना करना पड़ता है। सो अच्छा, मोस्टली लोग जब बिट्रेयल का सामना करते हैं तो उनको लगता है कि मे बी इज देयर ओन मिस्टेक। सो इसी के ऊपर किसी ने बहुत ही खूबसूरत सी एक लाइन लिखी है जो कि अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो द लाइन इज, बिट्रेयल डज नॉट मेक यू काइंडनेस अ मिस्टेक, इट ओनली शोज यू वेयर यू काइंडनेस नीड बाउंड्री। सो बेसिकली कभी कभार जब कोई आपको बिट्रे करता है तो इट डजेंट मीन कि या आपकी मिस्टेक है या फिर आपने उसको खुद से ज़्यादा वैल्यू किया। सो इट्स योर मिस्टेक। ये जस्ट आपको रियलाइज करवाता है कि आपको खुद के वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। सो हर एक इंसान की दुनिया में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आई नो आप सबकी भी होंगी, ऐसे ही मेरी भी हैं, यानी कि अ सर्टेन पॉइंट जिसके आगे हम किसी के लिए भी कुछ एफर्ट्स नहीं कर सकते। सो हमेशा उनको प्रोटेक्ट किया करें और आप रेसिप्रोकल थ्योरी को फोकस किया करें, जहां आप दूसरे को उतना ही वैल्यू करें जितना कि वो आपको वैल्यू करता है। आई होप माई लवली डिवास यू गेट माई पॉइंट। सो अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का, क्योंकि डिवा डायलॉग का ये सबसे स्पेशल सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम बात करते हैं चटपटी रेसिपीज की, कुछ नई, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज। सो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से आपसे शेयर करती हूँ आज की फर्स्ट रेसिपी। सो देयर इज, जितनी देर में आप अपनी कॉपी पेंसिल डायरी रेडी करते हैं या फिर अगर आप कोई भी काम कर रही हैं तो उसे कर दीजिए एक से दो सेकंड के लिए स्किप, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी। सो जल्दी से अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, तब तक के लिए हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक मज़ीद खूबसूरत सा ट्रैक। अच्छा, ये ट्रैक मुझे बेहद पसंद है और आजकल मैं इसे कंटिन्यूसली काफ़ी मरतबा सुन चुकी हूँ। सो इसीलिए आप सबके लिए भी प्ले करती चलती हूँ, सुनते हैं ये ट्रैक। ट्रैक के उस पार आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सी चिकन रेशमी मलाई हांडी।

All right, listeners. Well, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय किया होगा. सो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की रेसिपी की जाने. सो जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी है चिकन रेशमी मलाई हांडी. सो किस तरह से बनाना है इस रेसिपी को, आइए सबसे पहले आपसे इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ. सो आप आराम से इनको नोट कर लीजिए. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं उनके लिए कुछ यूँ हैं. सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन हाफ के जी. वेल डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में बना रही हैं. सो यहाँ मैं जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ, सो इट्स अ सर्विंग फॉर 2 to 3 पर्सन. सो आई थिंक सो हाफ के जी इज इनफ. सो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन 500 ग्राम्स. बोनलेस चिकन हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. साथ ही साथ अब ज़रा स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. सो एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है. उसके बाद काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून. उसके बाद धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून. नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका. कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून. साथ ही साथ लेमन जूस 1.5 टीस्पून. विनीगर जस्ट अ टाइनी अमाउंट. क्रीम 1.5 कप. डिपेंड करता है कि आप किस कदर क्वांटिटी में बना रहे हैं. सो जहां आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं 500 ग्राम्स, तो इतनी क्रीम इज इनफ. साथ ही साथ ग्रीन चिलीज 1.5 कप, यानी कि आपने कट करके उस क्वांटिटी से ऐड कर लेना है. सो ये वो तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है. अब जब बात कर लेते हैं बाकी तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स की. सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए प्याज 2 बारीक साइज़ के कटे हुए. साथ ही साथ हमें चाहिए शिमला मिर्च 1 से 2 अदद. जिंदा गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून. चीज स्लाइसेस 1 से 2 अदद. योगर्ट 2 to 3 टेबल स्पून, ठीक है. टमाटोज 1.5 कप. सो ये कुछ सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स. और मुझे उम्मीद है कि ये तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स तो आप सभी के घरों में मौजूद होंगे ही होंगे. सो उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिए होंगे इंग्रेडिएंट्स. सो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जाने. सो सबसे पहले हम कर लेंगे चिकन को मैरिनेट, क्योंकि मैरिनेशन सबसे ज़रूरी होती है. और आई प्रेफर कि जब भी आप कोई रेसिपी ट्राई करने लगें तो सबसे पहले आप मैरिनेट करके चिकन को रख दें. इससे ये होगा कि जितनी देर में आप बाकी के प्रिपरेशंस को तैयार करते हैं उतनी देर में आपका चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा. तमाम तरह स्पाइसेस चिकन के अंदर मिक्स एंड अप हो जाएंगे. सो सबसे पहले आप एक बाउल ले लें, बाउल में चिकन को ऐड कर लें, ठीक है. साथ ही साथ आप इसमें शामिल करें रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर के साथ साथ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद नमक, नमक के बाद कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर. उसके साथ ही आप क्रीम को ऐड कर दें, ठीक है. और इन तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ठीक है. साथ ही साथ अपने लेमन जूस ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि लेमन जूस आपके चिकन को थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देगा. सो इसके बाद आप इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स एंड अप कर ले. मिक्स एंड अप करने के बाद अब आपने फोकस इस चीज़ को करना है कि आपने इस चिकन को कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट के लिए रखना है. अच्छा, ये मैं आपको कम टाइम पीरियड बता रही हूँ. अगर आप चाहें, अगर आपके पास बहुत सारा वक्त हो तो आप 50 to 60 मिनट्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप मैरिनेशन को रखते हैं उतने ही ज़्यादा आपका चिकन जूसी बनता है, स्पाइसेस अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाते हैं और आपको एक बहुत यूनिक टेस्ट मिलता है. सो वेल लिसनर्स, जितनी देर में आप चिकन को मैरिनेट करके साइड पर रख देते हैं उतनी देर में हम बाकी की प्रिपरेशंस कर लेते हैं. सो पैन को गर्म करेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल. अच्छी तरह से गर्म होने देंगे. अगर आपके पास कुकिंग ऑयल मौजूद नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो बटर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें शामिल कर देना है प्याज. प्याज को आपने बिल्कुल बारीक कट करना है, ठीक है. आपने प्याज को ज़्यादा बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, क्योंकि हमारी इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी रेसिपी का कलर बेहद डार्क हो. सो आपने जस्ट हल्का सा प्याज सॉटे करना है. जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें शामिल कर दें जिंजर गार्लिक पेस्ट.
एक से दो मिनट के लिए बस उसे फिर सोटे कर ले। सोटे करने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चिकन को कुक करें, ठीक है। अब आपने चिकन को इतनी देर तक कुक करना है जितनी देर तक आपका चिकन 90% तक कुक हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बात तेज़ी से कर रहे होते हैं तो थोड़े से वर्ड अप एंड डाउन हो जाते हैं। सो वेल लिसनर्स, मैं ये कह रही थी कि आपने चिकन को इतनी देर तक कुक करना है कि आपका चिकन तकरीबन 90% तक कुक हो जाए। सो जैसे ही आपका चिकन 90% तक कुक हो जाए, अब आप इसमें शामिल कर दें शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से सौटे कर लें। सौटे करने के बाद अब इसे मज़ीद 5 से लेकर 6 मिनट तक कुक करें। लेकिन इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज द रेसिपी लुक्स वेरी अनब्यूटिफुल। और मुझे लगता है कि जब आप कुछ भी पका रहे हों तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि टेस्ट तो अच्छा हो ही हो लेकिन प्रेजेंटेबल भी रेसिपी दिखनी चाहिए। सो 5 से 6 मिनट के बाद अब आप इस ऊपर से क्रीम ऐड कर दें, ठीक है। क्रीम नहीं आपके पास तो आप योगर्ट ऐड कर दें, दोनों में से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो उसके 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से ढक कर कुक करें, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि अब आपका चिकन और कुकिंग ऑयल थोड़ा साइड होना शुरू हो चुका है तो इट मीन्स इट्स अ साइन कि आपकी रेसिपी हो चुकी है तकरीबन तैयार। अब ऊपर से इसमें शामिल कर दें चीज़ स्लाइस, ठीक है, और मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि तमाम तरह चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और टडा, आपकी मज़ेदार सी रेसिपी चिकन रेशमी मलाई हांडी हो गई तैयार। मैक्सिमम 15 से लेकर 20 मिनट में आप इस रेसिपी को झटपट तैयार कर सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, जूसी और टेस्टी बनेगी। अब यह पे डिपेंड करता है कि आप इसे रोटी के साथ नोश फरमाते हैं या फिर चपाती के साथ या फिर नान के साथ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है और बहुत ही कम वक्त लेती है। सो अगर आप कभी बेहद बिजी हों या आप चाहते हों कि बस झटपट से आप कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना लें तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगी। सो वेल लिसनर्स, आज के स्पाइस किचन की ये थी फर्स्ट रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो कि रेसिपी को लाजमी आज ही ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिएगा। सो प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात। और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं आज आपके लिए, सो आपसे एक एक करके शेयर करते हैं। फिलहाल के लिए ट्रैक को एंजॉय करें।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। तो लिसनर्स आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम दीवा डायलॉग और मैं हूं आपकी मेज़बान आरजे ज़ैनब फातिमा। सो वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी को, एक बार फिर से बताते चलती हूँ आप सभी को कि अगर आप बनना चाहते हैं दीवा डायलॉग के इस सफ़र का हिस्सा तो किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सिंपली आपको जाना होगा हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 01157100971। सो थ्रू दिस नंबर आप ना सिर्फ अपने फीडबैक को हम तक पहुंचा सकते हैं बल्कि आप डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पर भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से हैं कंफ्यूज, सो उन तमाम तरह चीज़ों के लिए, उन तमाम तरह बातों के लिए आप हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान को जो चीज़ें बजाते खुद बेहद मुश्किल लग रही होती हैं लेकिन जब वो किसी दूसरे से बात करता है या किसी दूसरे का ओपिनियन लेता है तो वही तमाम तरह चीज़ें उसके लिए बेहद आसान हो जाती हैं। सो कुछ इसी तरह से हमेशा मैं कहती हूँ कि आप हमसे शेयर किया करें, हमें बताया करें, हो सकता है कि मैं आपको कोई अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दे दूँ। सो साथ ही साथ आप सभी को बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है दमदार और आप अपनी आवाज़ का जादू चगा सकते हैं तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमारी इस वेबसाइट पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस हासिल हो बिना किसी इंटरप्शन के, आप कहीं पर भी बैठकर हेडफोन्स लगाकर आसानी हमें ट्यून करें, सो उसके लिए आपको करना होगा हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM। सो बस जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और यही वो तमाम तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो वेल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए क्योंकि ये प्रोग्राम ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम है बल्कि है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि कमर्शियल ब्रेक से पहले हमने स्टार्ट किया था आज का द स्पाइस किचन जहां मैंने आपसे एक बहुत ही मजेदार सी जबरदस्त सी रेसिपी शेयर की विच इज कॉल्ड द मज़ेदार चिकन रेशमी मलाई हांडी। आई होप आपको वो रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि इट्स अ रियली सिंपल रेसिपी, आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें क्योंकि आजकल के इस मसरूफ़ तरीन जैसे कि आजकल की इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में इंसान का दिल करता है कि इंसान कुछ मज़ेदार, कुछ चटपटा ट्राई करे लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट ना करनी पड़े। सो आप सभी लोगों के लिए और स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो कि किचन में बहुत कम कम जाते हैं, दिस रेसिपी इज अ हेवन। सो वेल लिसनर्स, जहां हम चटपटा, तीखा, कुछ मजेदार इन तमाम तरह चीजों के मुतालिक बात करें, वहीं अगर मीठे की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आज आप सभी के लिए द स्पाइस किचन में मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही जबरदस्त सी डिलिशियस सी रेसिपी। सो मीठे के बिना हर दस्तरखान है अधूरा, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी कभी कभी मीठे के बिना अधूरी हो जाती है। वेल आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन अक्सर औकात ऐसा मेरे साथ होता है कि जब मैं कभी किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हूँ तो ही सेड के लगता है तुम बहुत कड़वी चल रही हो, कुछ मीठा खाओ ताकि तुम थोड़ी मीठी मीठी बातें करो। सो इसी के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। सो जितनी देर में आप ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक से वापसी पर साथ ही हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर देंगे। सो जल्दी से अटेंटिव हो जाएं, रेडी हो जाएं इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए।

सो वेल लिसनर्स, आई के अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सो चिकन बिस्किट पुडिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट्स 2-3 पैकेट। आप इसमें शामिल कर सकते हैं मिल्क 1-2 कप, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, चीनी 3-4 चम्मच, क्रीम 1 पैकेट, चॉकलेट 1.5 कप, क्रैकेड चॉकलेट आपने इस्तेमाल करनी है, एंड वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून। सो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। देखा आप सबने कितने सिंपल से कितने बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जाने। सबसे पहले चॉकलेट बिस्किट्स को हम अच्छे से क्रश करके बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर को सर्विंग डिश में स्प्रेड करके हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब सॉस पैन में दूध, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर और चीनी इन सभी को शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल मीडियम और कंटिन्यूसली स्टेयर करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल थिक और क्रीमी ना हो जाए। सो याद रखिएगा कि आपने कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है, अदरवाइज इसमें फिटकरी बन सकती हैं जो कि आपकी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देंगी। सो आपने एक बहुत ही रिच, क्रीमी और स्मूथ बैटर रेडी करना है। सो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली चम्मच चलाना होगा। सो फ्लेम बंद करके वनीला एसेंस अब इसमें शामिल कर दें, मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने दें। सो इस बीच जितनी देर के अंदर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होता है, आप बिस्किट्स की लेयर के ऊपर चॉकलेट पुडिंग की लेयर स्प्रेड कर दें, उसके ऊपर क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगाएं और ग्रेटेड चॉकलेट से अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर दें। इसे 2-3 घंटों के लिए आप आराम से फ्रीज कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद आपकी पुडिंग मज़ीद और भी ज़्यादा यम्मी और डिलिशियस लगे। सो 2-3 घंटों के बाद आप आराम से इसे फ्रीज़र से निकाल कर अपनी फैमिली के साथ नोश फरमा सकते हैं। ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। कैसी लगी आपको रेसिपी? आपने सोचा भी नहीं होगा कि रेसिपी इस कदर शॉर्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ, लेकिन होंगी बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट, ताकि आप जल्दी जल्दी से उन रेसिपीज़ को बना लें, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट ना करनी पड़े। और जितनी भी हमारी डिवाज हैं जो कि वर्किंग वूमेन हैं, डेली बेसिस पर घर से बाहर निकलती हैं, फैमिली को भी उनको टाइम देना होता है और साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है घर से बाहर की। सो आपके लिए ये रेसिपी बेहद ज़बरदस्त है। सो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप आज ही चिकन रेशमी मलाई हांडी बनाएं लंच में या फिर डिनर में, और मीठे के तौर पर आप चॉकलेट बिस्किट पुडिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलिशियस बनेगी। सो अभी जब मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि बस हम बातों को यहीं कर दें स्टॉप और मज़ेदार से इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कर लें, लेकिन चूँकि प्रोग्राम करना है सो फिलहाल के लिए मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन आप ज़रूर खा सकते हैं इसे बनाकर। सो लाजमी अपना फीडबैक मुझे शेयर करिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी, और मज़ीद ये कि आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपी सीखनी है। सो साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक फूड सीरीज स्टार्ट करें या नहीं। सो जिस तरह से आप हमें सजेस्ट करेंगे ठीक उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम का पैटर्न डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ना सिर्फ मेरा प्रोग्राम है बल्कि है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम। और रेडियो फजा 97.1 FM हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता है कि हम अपने लिसनर्स को कभी भी निराश ना करें और आपकी लाइफ में लेकर आए इन्फॉर्मेशन को साथ ही साथ थोड़े से कम्युनिकेशन करें और इंटरटेनमेंट को भी साथ ही साथ कंटिन्यू रखें। सो वेल लिसनर्स, जहाँ हमने कुछ तीखा कुछ मीठा इन दोनों चीज़ों की बात कर ली, तो अब आप सबके लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि खाने में ड्रिंक की भी बेहद ज़रूरत होती है। सो वेल लिसनर्स, बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक। हम इस्तेमाल करेंगे इस ड्रिंक में मिंट को, क्योंकि मिंट बेहद ताजगी का एहसास दिलाता है और थोड़ा सा माइंड को भी रिफ्रेश कर देता है। सो बनाने जा रहे हैं हम मज़ेदार सा मिंट मार्गरीटा, लेकिन थोड़ा सा देसी स्टाइल में। तो किस तरह से बनाना है इस ड्रिंक को, सबसे पहले इंग्रेडिएंट शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। सो इसके लिए हमें चाहिए मिंट लीव्स 4-5 अदद, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, उसके बाद लेमन जूस 1-2 चम्मच, और हम कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम 7 अप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्प्राइट।
सो दोनों में से ऑप्शनल है जो आपको पसंद हो, ठीक है, तो आपने वो सॉफ्ट ड्रिंक भी इस्तेमाल कर लेनी है। सो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, अब हम ज़रा बनाते हैं अपनी रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक को। सो सबसे पहले हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें शामिल करेंगे ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि ठंडक के बिना तो ड्रिंक बिल्कुल भी अधूरी है। साथ ही साथ शामिल करेंगे इसमें मिंट लीव्स, मिंट लीव्स को ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद नमक, साथ ही साथ लेमन जूस और लास्ट में विनीगर, क्योंकि विनीगर भी एक अच्छा स्मूथ टेस्ट क्रिएट करता है और पर्सनली मुझे ड्रिंक्स में विनीगर बेहद पसंद है और मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग विनीगर को बिल्कुल भी एज अ ड्रिंक में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। सो वेल लिसनर्स, अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट में कर लीजिए ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद आपकी मज़ेदार से ये रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक हो जाएगी तैयार। अब आप इसे ग्लास में ऐड करें, ठीक है, ऊपर से आप लेमन के स्लाइसेस कट करके डाल सकते हैं या फिर मिंट लीव्स। ओवरऑल ये दिखने में भी प्रेजेंटेबल दिखेगी और टेस्ट में तो लाजवाब होगी ही होगी। सो ये थी हमारी आज की द स्पाइस किचन की चटपटी सी रेसिपी, जिसमें सबसे पहले हमने चिकन रेशमी मलाई हांडी बनाई, सेकेंडली हमने चॉकलेट बिस्किट पुडिंग और थर्डली अ रिफ्रेशिंग मिंट मार्गरीटा। सो ये है आपका आज का द परफेक्ट मील एंड आई होप कि आपको ये मील बेहद अच्छा लगा होगा। सो लाजमी ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा। सो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, 0115710971 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपका और मेरा रابطے का जरिया। सो जी प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक, क्योंकि अभी अभी हमें एक फरमाइश मौसूल हुई है। सो बहुत सारे ऐसे भी हमारे लिसनर्स हैं जिनकी फरमाइशें हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम बेहद कम होता है, लिमिटेड सा टाइम पीरियड होता है। सो इस वजह से बाकी ओवरऑल कोई और रीज़न नहीं है। सो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, हमें दोबारा बताते रहा करें और मैं मेक श्योर करती हूँ कि जिन लिसनर्स के ट्रैक्स को हम एक दिन प्रोग्राम में शामिल ना कर सके उन्हें हम नेक्स्ट डे शामिल कर लें। सो ये छोटा सा ट्रैक है, ट्रैक के उस पार करते हैं फिर से गपशप।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: इसी के साथ ही प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल आ चुके हैं करीब। सो बहुत अच्छा लगा आज आप सबके साथ गपशप करके, बातचीत करके। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। सो आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि था खुद को वैल्यू करना, खुद को समझना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। उम्मीद तो यही है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। वेल, अगर इस हवाले से हो आपका कोई भी सवाल, सो सिंपली आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि है 01157100971। सो लाजमी आज के प्रोग्राम का फीडबैक शेयर करिएगा, आज की रेसिपीज के बारे में बताइएगा, और साथ ही साथ अपना बेहद ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो मेक श्योर करिएगा कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बने सबसे खूबसूरत दिन, और आप आज के दिन कुछ खास, कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव करें, क्योंकि इस दुनिया में कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो अपना कीमती वक्त कभी भी ज़ाया नहीं करते और हर लम्हा इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से वो अपने इस वक्त को यूटिलाइज़ कर सके, किस तरह से वो अपने ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद करके दिखा सके। क्योंकि आई फील लाइक स्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप एक या दो या फिर तीन दिनों में हासिल कर लें। अगर आप कॉन्टीन्यूसली मेहनत करते रहते हैं तभी जाकर आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। सो इस खूबसूरत सी बात के साथ, इस मोटिवेशनल कोट के साथ प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, टीवर डायलॉग को दे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप सबके लिए एक अदद और खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक प्ले कर देती हूँ। सो आप इस ट्रैक को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें। टेक केयर, बाय बाय।

सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबी पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के देखते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services looking

0: Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention!
2: Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: दीजिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: न्यू बेस फोर्ट नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी, ओ वी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने। मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: इनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चल

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 0759315069. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों?

0: बहरहाल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो है वो बड़ी जरूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग अपनी कुछ भी राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा रबते का नंबर 01157100971 है। इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और ज़रूर हो जाइए ताकि मुझे भी आइडिया हो हमें कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। अश्क एक सॉन्ग है जी, करण औजला का नया लॉन्च हुआ है, आपने होपफुली सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप सुनिए, मेरे साथ चल के एंजॉय करते हैं करण औजला के इस सॉन्ग को और इस सॉन्ग की वाइब कैसी है इसके ऊपर तो हम इस गाने को सुनने के बाद ही बात करेंगे। चलो आइए मिलके सुनते हैं।
1: Splendid idea, sir.

वेल जी, तो अभी आप करण ओजला का गाना सुन रहे थे और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। नया गाना, नया सॉन्ग था और नई वाइब थी। और हमेशा की तरह करण ओजला जो है उन्होंने हमें क्या उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जी बिल्कुल उसको ये कहते हैं कि जी डिसअपॉइंटमेंट नहीं किया उन्होंने हमें। और मुझे तो गाना बड़ा अच्छा लगा। आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, यानी कि इस गाने का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लगा। और उसके अलावा जी, हम बात कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि ज़िंदगी जो होती है वो आपको किस तरह से हम स्पेंड करते हैं, किस तरह से स्पेंड करनी चाहिए। मेरा जो है वो ज़िंदगी के अंदर रोल क्या होता है कि भाई दूसरों को लेके मैं क्या सोचता हूँ कि हम किसी के लिए क्या ही कर सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हम किसी के लिए ये कर लें कि अगर आप उसके लिए ब्रिज का रोल प्ले कर लें कि आप उसकी मोहब्बत को मिला दें और किसी का पैगाम किसी तक पहुंचा दें, मोहब्बत वाला, नफरत वाला नहीं, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़कर बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ज़िंदगी जो है मौके भी इस तरह के कभी कभी देती है, हमेशा नहीं देती। और उसके अलावा जो है वो जी, ज़िंदगी में आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना चाहिए ये भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या बोलना चाहिए और कहाँ कहाँ बोलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जी ज़िंदगी के अंदर कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पर जो है वो बोलना है और कहाँ पर खामोश रहना है, कहाँ पर हमने जवाब देना है, कहाँ पर जवाब नहीं देना। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हमें ये भी नहीं समझ आती कि जी हम ये बात बर्दाश्त करें या फिर यहाँ पर अपनी जो है बात वाजिया कर दें, क्लियर कर दें। होपफुली जब आप लोग मैच्योरिटी लेवल को जो है वो अप्रोच करते हैं, यानी कि आप जब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। क्योंकि जी कभी कभी हमारी खामोशी जो है हमारी मैच्योरिटी बन जाती है, और कभी कभी यही खामोशी दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाती है कि शायद शायद शायद हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जी बिल्कुल, आज का जो सवाल है, वो आज का जो टॉपिक है, वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सादा सा है कि क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, या फिर कुछ बातों को खामोशी से जो है वो गुजर जाने देना ही मेरे ख्याल से बेहतर होता है। आप अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमेगा और यहाँ पर ही हम जो है वो घूमते फिरते रहेंगे। इसके अलावा भी डिस्कस करेंगे आगे पीछे की चीज़ें भी। डेफिनेटली हमारे पास 2 घंटे हैं और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और हम बहुत सारे टॉपिक्स को जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा होगा, जो मेन हमारा टॉपिक होगा, वो यही होगा कि क्या हर बात का जवाब देना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस बात को लेकर ही मेरे ख्याल से हमारे पास से जो टाइम है वो उसको हम अच्छे से गुजार सकते हैं।

वेल जी, इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन आई जहां पर आपने ये सोचा कि जी भाई यहां पर अब मुझे जवाब देना चाहिए, या फिर यहां पर मुझे जवाब दिए बगैर ही चुप होके खामोशी से गुजर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी राय ये होती है कि जी हमें जो है हर बात का जवाब दे देना चाहिए, ताकि हमारे बाद में माइंड में ये चीज़ ना आए कि हमने उस बात का जवाब दे दिया होता, क्योंकि ये एक लफ्ज़ होता है, काश हमने उसका जवाब दे दिया होता, काश हमने ये कर लिया होता। आपके साथ कब ऐसा हुआ? बहरहाल जी, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जी वो जो सिचुएशन होती है वहाँ पर वो जवाब नहीं देते, और बाद में उनको ये रिलाय होता है कि भाई ये जो मेरा डिसीजन था खामोश रहने वाला, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था और मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया। वेल जी, इसी टॉपिक के ऊपर हम रहेंगे और इस पे बात करेंगे, मजीद बात करेंगे, लेकिन एक सॉन्ग है मेरी आंखों के सामने और इस सॉन्ग के उस पार एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा से आवाज की दुनिया में आपके पास होंगे, तो आप लोग तब तक मुझे बता सकते हैं अपनी राय के बारे में कि आप लोगों ने कब कब ये डिसीजन लिया कि भाई यहाँ पर मुझे खामोश हो जाना चाहिए और यहाँ पर जो खामोशी है वो यही बेहतर है, और उसके बाद आपको ये फिर एहसास भी हो गया हो, या फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको पता चल गया हो भाई मैंने जो वहाँ पर ये डिसीजन लिया था खामोश होने वाला वो बड़ा अच्छा था और बड़ा कमाल का फैसला था मेरा, यानी कि आपकी ज़ात का। तो बताने के लिए आपने करना कुछ है, आपने हमारा रابطے का नंबर 0115710971 इसको डायल करना है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। कोई हिडन चार्जेस नहीं, ना ही सामने कोई चार्जेस हैं, ना हिडन चार्जेस हैं, सिंपली व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जी, आप अभी गाना सुनिए, एक बड़ा अच्छा सा मैशअप है, और इसके बाद दोबारा से हम आपको ज्वाइन करेंगे।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते रहना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 एफएम। रोटिंगम से इस वक्त लाइव हूं और मेरे साथ जो है वो क्या चल रहा है, जिंदगी के क्या मामला चल रहे हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे प्रोग्राम में। बरल जी, एडवर्टाइजमेंट जो थी उससे पहले हमारी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि कहाँ कहाँ पर जो है वो खामोश होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर अपनी बात जो है वो उसका इजहार करना चाहिए, कहाँ पर अपनी राय देनी चाहिए, कहाँ पर आपकी राय देना ज़रूरी होती है और कहाँ पर खामोश हो जाना बेहतर होता है। इस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम जो है वो टॉपिक लेकर चल रहे थे। क्योंकि जी, खामोशी जो है वो हमेशा कमज़ोरी नहीं होती और हर आर्गुमेंट का जवाब भी जो है वो ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जी, जो गुस्सा है उसमें बात का जवाब दिया गया जो है ना, समटाइम इंसान के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उसको बढ़ा देता है और बहुत सारे रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारी दोस्तियां जो हैं वो टूट जाती हैं और बहुत सारे ऐसे मामलात आपके साथ वाकया हो जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असर करते हैं। बरल जी, खामोश रहने और दिल में बात को दबाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं समटाइम अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हमें समटाइम खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें जजमेंट ये करते हैं कि जी, जहाँ पर ये बंदा खामोश हुआ है यहाँ पर जो है वो ये कमज़ोर पड़ गया है। जबकि मेरे ख्याल से अच्छी खामोशी जो है वो अच्छा एक लिसनरशिप जो होती है ना, जो आपका एक अच्छे से सुनना, किसी को सुनने का जो अंदाज़ होता है वो कहलाती है। मैंने 2017-18 में जब मार्केटिंग स्टार्ट की तो हमारी उस टाइम मार्केटिंग का स्टाइल ये हुआ करता था कि हमें जो है वो अगले बंदे की आर्गुमेंट्स सुनने पड़ते थे, अगले बंदे की जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स उसके सुनने पड़ते थे अपनी प्रोडक्ट को लेके, या जो भी आप अपना जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं उस चीज़ को लेके आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुननी पड़ती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इग्नोर करना पड़ती हैं कि बंदा क्या ही कहे। लेकिन उस टाइम का जो माहौल था, उस टाइम का जो क्राइटेरिया था, आगे से मार्केट करने वाले बंदे जो मेरे बैच के थे वो आर्गुमेंट के साथ, आर्गुमेंट का ही जवाब जो है वो आर्गुमेंट के साथ देते थे और उस बात को उन्होंने इस तरह से प्ले करना, यानी कि अगले बंदे ने अगर आपसे कोई उल्टी सीधी बात कर दी, आप उसको गुस्से में, गुस्सीले अंदाज में जो है वो जवाब देंगे तो उसका क्या ही असर होगा, क्या ही आप उस बंदे को सर्विसेज दे सकेंगे या क्या ही आपकी जो है वो डील कंप्लीट होगी। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है। बहरहाल जी, जब मैं उस टाइम सुनता था और मैंने चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी और थोड़ा बहुत मैं अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को, तो मैंने जब उस टाइम सुनना स्टार्ट किया, एक अच्छा लिसनर बन के लोगों की बातें सुनी, लोगों की चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, फोकस किया और उनके जो कंप्लीमेंट्स थे उनको भी नोट किया, तो यकीन कीजिए कि मेरे लिए वो बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई थी। नॉट इवन उस टाइम, बल्कि उसके कुछ टाइम के बाद मुझे उसके रिज़ल्ट आना शुरू हुए और फिर पता चला, और जब हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई तो फिर जाके आइडिया हुआ। लेकिन मैं अगर उस टाइम फ्रेम का आपको बताऊं तो उस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो सुनने को मिले, बहुत सारी नेगेटिव थाट्स जो थी लोगों की, उन्होंने अपनी उस थाट का इजहार किया कि भाई तुम क्यों सुनते हो, तुम उनको जवाब क्यों नहीं देते। लेकिन मेरे लिए वो फैसला बड़ा अच्छा था। जब मैं बाद में मैंने सोचा कि यार, मेरे लिए फैसला अच्छा इसलिए था क्योंकि मैं जब सुनता था उस टाइम तो वक्त गुजर जाता था, लेकिन उसके बाद मेरे उन लोगों से रिलेशन इस तरह के डेवलप हुए कि हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इस तरह की हुई कि मैं बड़ी बड़ी डील्स लेके आता रहा हूं कंपनी को, हमने बहुत ज्यादा फायदा दिया। तो ये जो चीज़ है जी, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी देती है, लेकिन हर जगह पे सुन लेना, हर जगह पे बर्दाश्त कर लेना ये भी ज़रूरी नहीं है। और हर बंदे का पर्सनल एक अलग से ही एक्सपीरियंस होता है। आप जिस बंदे को पकड़ेंगे भाई, उसकी एक नई कहानी होगी और उसका एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सुनने को। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेके कि आप इसके बारे में एक अलग से ही राय इख्तियार नहीं कर सकते, बल्कि इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय हो सकती है।

क्योंकि जी समटाइम ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आपकी जो बाउंड्रीज है मुसलसल कोई बंदा आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा हो और आपकी इज्जत नफ्स जो है उसके ऊपर अपने पाँव रखे या अपनी ज़ुबान के साथ उसको पमाल करने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि खामोशी से मेरे ख्याल से उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा। ये एक अलग किस्म की राय है। देखिए हर चीज़ की जो सिचुएशन होती है मेरे ख्याल से उसके अंदर हम जब देखते हैं और हर तरह का अलग से क्राइटेरिया होता है और हर सिचुएशन के अंदर अलग से ही एक जो है वो रिजल्ट निकलता है।

0: बहरहाल जी, इसी टॉपिक के ऊपर हम मजीद बात करेंगे और आपकी जो राय है उसका भी हम एहतराम करेंगे और उसको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन ये एक बारिश सॉन्ग है, इस सॉन्ग के उस पार दोबारा से हम मुलाकात करेंगे आवाज़ की दुनिया में रेडियो फ़ज़ा पर ही। और अगर आप अपनी राय हम मेरे तक पहुँचाना चाहते हैं तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने मोबाइल फ़ोन उठा लेने हैं और डायल करना है 01157100971 हमारा रबते का नंबर। और इस सॉन्ग के बाद हम दोबारा से अपने इस टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार।
1: जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब दिल लौटने के नहीं। छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को मुझे तो जमाना हो।

फसाना हुआ वो जो उलझा तवैशी हवा से कभी उस दिए को बुझे तो जमाना हुआ। एक खुशबू सी फैली है चारों तरफ उसके इम्कान की उसके ऐलान की।

जिंदा है मेरा ऐसा सुकून जिस पर तकदीर भी फिदा हो, मरता हूँ खामोशी में, ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा।

0: वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 FM। इस वक्त हम जो है वो लाइव हैं नॉटिंघम से। बरल जी, हम बात कर रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या कब कब बोलना चाहिए, और हाँ जी क्या क्या कब कब कैसे कैसे बोलना चाहिए। टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और एक गाना था बड़ा अच्छा सा जो हमने प्ले किया हुआ था। इस गाने से पहले हमारी ये बात हो रही थी कहाँ पर बोलना ज़रूरी होता है और कहाँ पर आपकी जो है वो आवाज़ निकलनी चाहिए, कहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपनी खामोशी को तोड़ दें। मेरे ख्याल से जी, जहाँ पर आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको पमाल किया जा रहा हो, यानी कि आपकी इज़्ज़त के बारे में कोई बात आ जाए, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है जी आपका बात करना। वहाँ पर आपको अपनी राय का इजहार करना, यानी कि आपको अपना आप बताना चाहिए कि भाई ये बात ऐसे नहीं वैसी है। और जहाँ पर ख़ास तौर पे रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो आ जाएं, वहाँ पर भी आपको चाहिए कि आप अपनी बात जो है वो आगे डिलीवर करें। या फिर वहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है जी, जहाँ पर आपकी खामोशी को आपकी रजामंदी समझा जा रहा हो, यानी कि कोई बंदा आपसे कुछ पूछे और आप आगे से खामोश हो जाएं, आपकी खामोशी आपके मुताबिक इनकार हो, लेकिन जी अगले बंदे की सोच उसको सात पप्पू सलामी है जी। अगर वो बंदा ये सोचे कि भाई आपकी खामोशी आपकी, हाँ ये बात मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है कि मैं कहीं इनकार करना चाह रहा हूँ तो मुझे इनकार नहीं करना आता, ये मेरे अंदर पता नहीं नेगेटिव पॉइंट है शायद, आई थिंक सो, और कहीं ना कहीं शायद पॉजिटिव पॉइंट भी हो, लेकिन जी मुझे ये अपनी बात बड़ी बुरी लगती है कि मैंने किसी बात से अगर इनकार करना हो, किसी काम से इनकार करना हो, यानी कि आपने मुझे कुछ कह दिया कि भाई ये काम कर दो, मैं इनकार करना चाह रहा हूँ, तो मुझसे इनकार नहीं होता। और इस चीज़ ने मुझे बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े मामलात में जो है वो डिस्टर्ब किया, और बहुत बहुत जगहों पे मैं फंस भी गया। कुछ ऐसी चीज़ें थी मैं जो कर ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे ज़िम्मे वो डाल दी गई और मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया गया। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने उस खामोशी को हाँ नहीं कहना, और उस खामोशी को अगला बंदा हाँ समझ रहा है तो ये आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए और आपको इनकार कर देना चाहिए कि भाई बोलो यहाँ कि नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वेल जी, हमारे सामने एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगा ये बात बड़ी जरूरी।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आवाज की दुनिया में आपको दोबारा से खुशामदीद कहा जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम रोटिंगम से इस वक्त लाइव। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ट्यून किया है उनको बताता चलूं कि हमारा जो आज का शो है आफ्टरनून मिक्स, इसके अंदर हम कुछ अलग से टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं। टॉपिक बड़ा मजे का, क्रिस्पी सा है और स्पाइसी सा भी है, क्योंकि इसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं कि जी आप कहाँ कहाँ पर आपको खामोश होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर आपको बात करनी चाहिए, और आप लोगों की जो राय है उसका भी हम लोग एहतराम करते हैं और उसको भी हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो है म्यूजिक का बड़ा शानदार किस्म का तड़का जो है वो लगा रहे हैं। उसके अलावा जी, अगर आप इस शो के अंदर और इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम और शो मेरे ख्याल से एक ही बात है, इसके अंदर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपने करना कुछ यूं है, आपने डायल करना 01157100971 हमारा रابطے का नंबर। और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, शो के बारे में बता सकते हैं, और जी इसका जो आज हमारा टॉपिक है इस शो के अंदर उसके बारे में भी बता सकते हैं कि जी आपको आज का जो टॉपिक है वो किस तरह का लग रहा है और आपके साथ इस तरह के कब कब मामलात हुए। और हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि आपकी जो खामोशी है समटाइम वो इस तरह की होती है कि जी आपको आपकी जो खामोशी है वो अगर इनकार में हो तो उसको हाँ समझ लिया जाए, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला सीन होता है। और बाज़ औक़ात आप लोग इस चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं के बाद में आप फिर लाख एक्सप्लेन करते रहें, आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट नहीं करती और फुलफिल नहीं कर पाती उस बात को, क्योंकि आपकी जो खामोशी है उसको हाँ समझ के बाद में उस चीज़ को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है। बहुत सारे रिश्ते हैं इस तरह के जहाँ पर आप खामोशी इख्तियार करते हैं तो बाद में उस चीज़ को हाँ समझ लिया जाता है, जबकि आपने वो खामोशी इसलिए इख्तियार की होती है कि आपकी खामोशी को इनकार समझा जाए। बहरहाल जी, ये एक बड़ी अलग सी चीज़ है और बड़ी अलग सिचुएशन हो जाती है।

एक ऐसा ही वाक्य मेरे एक दोस्त था उसके साथ हुआ, और मुझे प्रोग्राम में ब्रेक से पहले वो बात याद आ गई थी। और मेरा जो है वो कमर्शियल में बड़ी ज़्यादा हंसी निकल आई। अकेला बैठा बैठा मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस बेचारे के साथ कुछ इस तरह का सीन हो चुका था जो आज हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट आता है। मतलब जी जो मेरा फ्रेंड था वो लाइक करता था किसी को, और उसके घर में रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन वो जिसको पसंद करता था घर में रिश्ते की बात उस लड़की के लिए नहीं थी चल रही। तो हुआ कुछ यूँ कि जी उसकी फैमिली जिस बंदी को पसंद करती थी, यानी जिस लड़की को लाइक करते थे उसकी फैमिली वाले, उन्होंने आके उस लड़के से पूछा कि भाई हमने वहाँ पर

ये सोचा कि आपका रिश्ता वहाँ पर कर लिया जाए। तो लड़का आगे से इनकार नहीं कर सका और खामोश हो गया। उसने समझा कि उसकी खामोशी को इनकार ही समझा जाएगा, लेकिन जी उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझ लिया गया। ये बात उसको तब समझ आई जब उसके घर वालों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी और कुछ ही दिनों के बाद उसकी इंगेजमेंट की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। और वो जो है जी हमारे साथ एक टूर पे गए हुए थे। हम जब टूर से वापस आए और थोड़ा घूमने फिरने के लिए गए हुए थे। मैं बड़ा ज़्यादा लाइक करता हूँ ट्रैवलिंग को। और हम इकट्ठे गए और दोस्तों के साथ जब हम वापस आए, आने के बाद जब हम गॉसिप कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से पिक्चर्स हम शेयर कर रहे थे कि भाई आपके मोबाइल में जो पिक्चर्स हैं वो दे दो, और जो हमारे मोबाइल में पिक्चर्स हैं हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। उसी दौरान उस बंदे की जो है वो हालत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी। बात करते करते वो परेशानी उसकी बातों में दिखाई दी और सुनाई भी दी। और हमें जब एहसास हुआ कि ये बंदा जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम दोस्तों ने फैसला किया कि हम इकट्ठे होकर उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि भाई क्या मसला हो गया, क्या ऐसी सिचुएशन हो गई या ऐसा क्या ही हो गया कि हम इतना अच्छा टूर करके आए हैं। उसके बाद तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जी जो ट्रैवलिंग होती है, जो टूर करते हैं आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से 1-2 महीने के लिए बिल्कुल इंसान जो है वो फ्रेश रहता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें, सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो बर्डन होता है काम का वो भी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को भी घूमना चाहिए ताकि आप लोग कुदरत के हसीन नज़ारे जो हैं वो देख सकें। बहरहाल जी जब हम इकट्ठे हुए और उससे बात की, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो है उसका एंगेजमेंट उसकी फ़ाइनल हो चुकी है, और उसकी एंगेजमेंट जो है आफ्टर 2-3 डेज़ की कोई डेट थी, और मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन गालबन जब हम वापस आए तो उसके 2-3 दिन बाद की उसकी फैमिली ने प्लानिंग की हुई थी कि जी आपकी एंगेजमेंट है, हमने बात कर ली है और बात इतनी बढ़ चुकी है कि बात अब एंगेजमेंट तक पहुंच चुकी है। कहता जी कि जब मैंने घर बात की तो उन्होंने बोला कि हमने तुमसे बात की थी और तुम्हारी खामोशी खामोशी हाँ में ही होती है। बेचारा कहता जी मैंने लाख एक्सप्लेन किया कि भाई मेरी हाँ नहीं थी, मेरी खामोशी मेरा इनकार था। कहता है मैं कैसे ही समझाऊँ। वो कहते हैं जी अब हमारी कमिटमेंट हो चुकी है। बड़े कहते हैं जी अब हम करके रहेंगे, अगर ना किता तो सी मर जाएंगे। तो उन्होंने पता है ना पंजाबी आंदा जी, पंजाबी जो है हमारे हमारे जो रिलेशन, जो हमारे जो बड़े हैं बाओजदाद हैं, हमारे जो बड़े जब फैसला कुछ कर लें फिर दुनिया इधर दी उधर हो जाए, ऐसी फिर फैसले तो नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक होती है, क्योंकि जी आप जब कमिटमेंट कर लेते हैं किसी चीज़ को लेके, और ख़ास तौर पे जब इतना सेंसिटिव मामला हो, तो जाहिर आप जब एक बड़ों की आपस में बात हो चुकी हो, जुबान हो चुकी हो, उसके बाद फिर आप क्या ही उस फैसले से पीछे हटना। खैर जी ये सिचुएशन थी, और इस सिचुएशन को हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी ही मुश्किल से हैंडल किया था। और फिर हमने उसके वालद साहब से बात की, उनको बिठाया, बात की कि देखिए अभी बात कुछ बिगड़ी नहीं है, अगर बंदा आपका हमारा जो यानी कि दोस्त है आपका बेटा वो इस चीज़ को लेके एग्री नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जो है इस फैसले को थोड़ा सा चेंज कर लें या कुछ इस तरह की बात करें उनसे ताकि मिली जुली बात हो जाए और बात को ख़त्म कर दिया जाए। खैर जी इन शॉर्ट ये कि आप देखें इस फैसले से हमें ये सबक मिलता है कि भाई आपको हर जगह पे खामोश नहीं हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपका हाँ या ना में जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर बात को क्लियर करें। बहरहाल जी ज़रा सा इमरान हाशमी का जो सॉन्ग है इसको हम सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गाने के उस पार दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाना बड़ा ज़रूरी है जी, और गाने के उस पार दोबारा से मिलते हैं।

वेल जी, वेलकम वंस अगेन। मुझे सुन रहे हैं आप रेडियो 97.1 एफएम से। बालल जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आपने जो बैलेंस है वो किस तरह से करना है, खामोशी को लेकर और बोलने को लेकर के, कहाँ पर आपने बात करनी है और कहाँ पर आपने खामोश होना है, इसके जो बैलेंस है इस चीज़ को आपने किस तरह से करना है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जी आज हम बड़े अच्छे अच्छे हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं।

वेल जी, ये टॉपिक जो है वो सेंसिटिव इस हवाले से भी है क्योंकि आप जब खामोश हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो खामोशी आपके लिए वो पॉजिटिव सिग्नल ही दे, क्योंकि सम टाइम जो है वो खामोशी अच्छी होती है और बाज़ औक़ात वही खामोशी जो है वो आपके लिए वो बाले जान बन जाती है इसलिए क्योंकि जी सम टाइम हमारे जो है वो आपस में कुछ रिश्तों को लेकर के कुछ बातें होती हैं, जब आप खामोश हो जाते हैं वो बात अंदर ही रह जाती है और फिर बात वो बढ़ती बढ़ती कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। वेल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप अगर आपके दोस्तों के दरमियान कोई बात आपको बुरी लग जाए और लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि छोड़ो यार कोई बात नहीं, फिर वही बात दिल में रहती रहती छोटी से बड़ी होती जाती है, तो क्या आप जो है वो बात को ख़त्म करने के लिए दोबारा फ़ौरन से बात कर लेते हैं या फिर आप कुछ गैप देते हैं ताकि कुछ सोच लिया जाए और समझ लिया जाए और अगले बंदे को भी टाइम दिया जाए और उसके बाद दोबारा से बात की जाए? ये बड़ा अच्छा डिसीजन भी हो सकता है कि आप कुछ गैप दें, लेकिन हर शख्स जो है वो अपने मुताबिक चलता है। आप इस चीज़ को लेके किस तरह से जो है वो फॉलोअप करते हैं और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है?

समटाइम कुछ इस तरह की लाइनें भी होती हैं जी जो आपकी खामोशी का इजहार होती हैं, और कुछ आप बोल के भी आप अपने अंदर वो बात रख लेते हैं। यानी कि समटाइम आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ इस तरह का वाक्या हुआ आपसे, आपका पार्टनर या आपका दोस्त या आपका चाहने वाला या आपसे प्यार करने वाला या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई भी मेंबर आपसे पूछता है कि भाई क्या बात हुई है, आप कहते हैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी आप खामोशी ही इख्तियार कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं खामोश होने का मतलब बिल्कुल ये होगा जी आपकी चुप ही लगी है। बहरहाल ये जो सारे शिकवे गिले होते हैं ये अपनों से ही होते हैं, और यहाँ से ही हम एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है तुमसे ही ये प्ले करने जा रहे हैं। इस गाने के उस पर दोबारा से हम मुलाकात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर खामोश होना चाहिए। इसके अलावा हमें आइडिया हो सके जी कहाँ पर रिश्तों में जो है वो खामोशी मोहब्बत को परवान चढ़ाती है और कहाँ पर रिश्तों में बोलना जो है वो मोहब्बत को फ़ायदा मंद साबित हो सकता है।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रनार स्लान अली और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून मिक्स में मुझे रेडी फॉर द 97.1 एफएम नॉटिंघम से लाइव। टाइम हो जाता है जी 3:30 का और आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 4 बजे तक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ पर खामोश होना चाहिए और कहाँ पर अपना जो है वो जवाब देना चाहिए, बात करना चाहिए, इस चीज़ को किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है बात करना, कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है खामोश होना और कहाँ पर जी जो है आपका इख्तलाफ़ होना ज़रूरी है और कहाँ पर आपका इख्तलाफ़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। क्योंकि जी रिश्ते जो हैं वो उस वक्त कमज़ोर नहीं होते जब इख्तलाफ हो, बल्कि रिश्ते उस वक्त कमज़ोर होते हैं जब लोग इख्तलाफ के बावजूद बात करना छोड़ देते हैं। यानी कि आपका इख्तलाफ हो और उसके बाद आप बात ही ना करें तो मेरे ख्याल से रिश्ते जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे जी मुझे आप एक बात बता सकते हैं कि जब आपको वो गुस्सा दिलाए, आपको किसी की कोई बात पे गुस्सा आ जाए तो आप क्या करते हैं? फौरन जवाब दे देते हैं या फिर खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर वो जगह छोड़ देते हैं या फिर आप ये सोचते हैं चलो बाद में बात करेंगे, भाई देखते हैं क्या किया जाता है उस टाइम। क्योंकि जी मेरे ख्याल में असल मकसद जो है वो ये नहीं कि आपने जवाब दिया या नहीं दिया, बल्कि असल चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने अपने जज्बात को उस टाइम किस तरह से कंट्रोल किया और उस फैसले को लेके आपने किस तरह पे जो है अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को अपनी मुट्ठी में बंद रखा और उस फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया, ये चीज़ मैटर करती है। आई थिंक सो हो सकता है कि आप इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि जी भाई आप जो है वो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने उस टाइम जवाब दिया या फिर नहीं दिया, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने उस टाइम जो है अपने इमोशंस को, आपने अपने जो है वो जज्बात को किस तरह से कंट्रोल किया। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, जो आपके मुंह से निकली हुई ज़ुबान होती है, वो अगले बंदे को हर्ट करती है और उससे फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। जबकि गुस्से में इंसान को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या नहीं बोलना, और फिर वो जो इमोशंस होते हैं वहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, उसी से चीज़ें ख़राब होती हैं और फिर वहीं से जाके भाई मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।

मैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो समझता हूँ कि गुस्से के अंदर भाई बोला ही ना जाए, मैं बोलता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जो गुस्सा है उसके अंदर जब बोला जाता है तो फिर मामलात ख़राब होते हैं, और गुस्से के अंदर मेरा जो गुस्सा है वो बड़ा ज़्यादा बुरा है, और जोशीले टाइप का गुस्सा है भाई, जो कि बड़ी अच्छी बात नहीं है। और मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा कि भाई आपने भी अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, कभी भी ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ यहाँ पर बड़ा प्राउड फील किया जाता है कि भाई वो बंदा जो है बड़ा गुस्से वाला है, या फिर वो बंदा जो है बुरा मना जाता है, बड़ी जल्दी बुरा मान जाता है, उससे बात करते हुए डर लगता है। ये बात जो है वो बड़ी कुछ लोग अपने लिए प्राउड फील करते हैं जब उनके बारे में ये इजहार किया जाए, इवन के खानदानों के अंदर भी और फैमिलीज के अंदर भी। हमारे यहाँ हर घर के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके बारे में ये इजहार किया जाता है कि भाई वो बंदा आएगा तो डर जाओ, सहम जाओ, और उससे बात करते हुए सोचो, एहतियात करो। ओके, कहीं ना कहीं ये बात अच्छी है कि आप बात करते हुए आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि अगला बंदा बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा इजहार ना करे अपनी मोहब्बत का, अपनी राय का, अपनी बात का, क्योंकि जी यहाँ से आके इख्तलाफ पैदा होते हैं, और फिर यहाँ से वो जो इख्तलाफ है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जब आप अपना इख्तलाफ कर ना सकें तो फिर वो जो है वो रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। और इस चीज़ को लेके कि कभी भी प्राउड फील नहीं करना कि अगर आपको ये समझा जाए या ये आपके बारे में राय जो है वो कायम की जाए कि आप बड़े गुस्से वाले हैं, तो मैं ये कभी भी बात अपने लिए अच्छी नहीं समझता जब मुझे कोई बंदा बोले कि भाई आप जोशीले हो गुस्से को लेके। मैं कहता हूँ भाई आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे जो है ना अंदर वो सब्र आ जाए या फिर गुस्सा कम हो जाए। वेल जी, जब मुझे गुस्सा आता है मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई ये इस बंदे के अंदर ईगो है, इसकी ईगो का मसला है, और वो जो है जी मेरी खामोशी को मेरी ईगो के साथ अटैच करके वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर ये बड़ा अजीब सा वो सिचुएशन, बड़ा अजीब सा सिनेरियो बन जाता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि क्या गुस्से के अंदर खामोश होना या फिर ओवरऑल खामोश हो जाना किसी बात को लेके, क्या वो ईगो का मसला हो सकता है? मेरे ख्याल में तो ये ईगो का मसला नहीं, हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जी सेल्फ रिस्पेक्ट यही है कि आप अपनी इज्जत को, आप अपनी हदूद को समझें, और आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी बात करूंगा, अगला बंदा मुझे क्या जवाब दे सकता है, तो फिर वहां से मसले मसाइल मेरे ख्याल से कुछ मैनेजेबल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जी अपनी इज्जत को बचाना उनके रिश्ते को बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बड़ी एक अलग सी एक चीज़ है। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है। बहरहाल, आपके लिए मुझे बताइएगा कि जो इज्जत है उसको बचाना ज़रूरी है या फिर अपने जो रिलेशन है उसको बचाना ज़रूरी है। अगर आपकी इज्जत और आपके रिलेशन के दरमियान में आप आके खड़े हो जाएं तो आप किस तरफ टर्न करेंगे? और ये भी बताइए कि क्या दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं या नहीं?

0: बस
1: वेल जी, गजनी का एक सॉन्ग है, गुजारिश इसका देंगे, बाद दोबारा से बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। कहीं मत जाइएगा, आवाज की दुनिया में दोबारा से आपका और मेरा साथ स्टार्ट होगा रेडियो फजा 97.1 एफएम से।
0: कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रनर्स लानली और आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 एफएम रोटिंगम से इस वक्त लाइव। अभी आप सुन रहे थे गुजारिश सॉन्ग जो कि गजनी मूवी का था। आमिर खान और आसिन पे इसको फिल्माया गया और ये जो सिंगर हैं इसमें जावेद अली हैं। गजनी मूवी जो है वो बड़ी खूबसूरत मूवी थी और ये मूवी जो है वो किस किस ने देखी हुई है आप मुझे बता सकते हैं, और इससे आपने क्या जो है वो हासिल किया, क्या सबक हासिल किया, भाई मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या सबक हासिल किया आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि गजनी मूवी है जो है वो इसके अंदर एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। इससे पहले जितनी मूवीज़ बनी वो एक अलग ही लाइन की थी, उसके अंदर जस्ट फाइट आपको नज़र आती है या फिर जस्ट रोमांस और उसके अलावा या फिर एक स्टोरी होती थी लव स्टोरी जस्ट ये, लेकिन जब मूवी मैंने देखी तो इसकी अलग ही एक स्टोरी थी और एक अलग ही स्क्रिप्ट था। बड़ी खूबसूरत मूवी और आज भी जब देखते हैं तो ये पुरानी वाइब देती ही नहीं। वेल जी, जो आज का हमारा टॉपिक था वो हम बात कर रहे थे कि हमें कहाँ पर बोलना चाहिए और कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ को हम डिस्कस करते करते यहाँ तक आन पहुँचे कि आपका और मेरा जो साथ है वो चंद ही लम्हों का रह गया है, क्योंकि टाइम हो जाता है 3:44 का और बहुत जल्द आज हम बिछड़ने वाले हैं और फिर मुलाकात होगी। लेकिन जी, उससे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक था उसको हम क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहे थे और हम ये फैसला करना चाह रहे थे कि आखिर कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है, यानी कि खामोशी जो है वो बेहतर है या फिर आपका जो है वो फट से जवाब दे देना ठीक है। हमने आज इसी चीज़ को बहुत सारे एंगल्स से देखा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक ही तरह से नहीं देखी जा सकती, क्योंकि आपका खामोश होना हर किसी ये मतलब नहीं कि आप अगला बंदा कुछ बोले जा रहा है और अपनी लिमिट्स जो है अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस करता जा रहा है और आप खामोश रहें। मैं तो हर किस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अगर कोई मेरी इज्जत नफ्स को पामाल करे और मेरे ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करनी शुरू कर दे कि वो भाई मेरे ऊपर बात हो ही ना और मुझे कहा जाए, तो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं उस चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगा। लेकिन जी, जहाँ रिश्तों की बात हो और जहाँ पर बात इतनी सेंसिटिव हो कि आप अगर बोलेंगे तो मामलात ख़राब हो सकते हैं और आपके ऊपर एलिगेशन भी ना लग रहा हो और आपकी इज़्ज़त को भी पामाल ना किया जा रहा हो, लेकिन कुछ इस तरह की डिस्कशन हो जहाँ पर आपको गुस्सा तो आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी इज़्ज़त के ऊपर बात हो तभी आपको गुस्सा आए, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, कुछ इस तरह के रिश्ते भी होते हैं जहाँ पर उल्टी सीधी बातें हो जाती हैं भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मैंने एक इवेंट अटेंड किया और वहाँ पर घड़ोली भरने की रस्म आपको पता होगा कि गांव में जो की जाती है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सर के ऊपर घड़ा रखा जाता है और शादी में मेहंदी से पहले ये रस्म की जाती है, मोस्टली मेहंदी वाले दिनों में की जाती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मेहंदी से एक दिन पहले जो है वो घड़ोली भरने की रस्म करते हैं। उसमें ये होता है कि जी आप जो दूल्हा है उसकी जो बहनें होती हैं वो सर के ऊपर पानी का जो घड़ा होता है उसको रखती हैं और वो लेकर जाती हैं कुछ रिश्तेदारों के घर जो उनके अजीज होते हैं, वहाँ से जाके वो पानी भरते हैं उस घड़े के अंदर और फिर वापस उसको लेकर आया जाता है। इसको कहते हैं घड़ोली भरना। इस रस्म को हमने देखा और मैं एक इवेंट जो अटेंड किया उसमें हुआ कुछ यूं कि जी कुछ रिश्तेदार जो थे वो उस दिन जिस दिन उस लड़के की शादी थी उन्होंने नाराज़गी इस बात की बना ली कि आपने घड़ोली हमारे घर से क्यों नहीं भरी। इस चीज़ के ऊपर यकीन कीजिए इतनी बहस हुई इतने मामलात ख़राब हुए, लेकिन जो दूल्हा था उसने सारी बातें बर्दाश्त की, क्योंकि उन्होंने जो अपना पॉइंट रखा वो बिल्कुल वैलिड भी था। कहीं ना कहीं दूल्हा भी अपनी बात पे ठीक था, कहता मैंने भाई एक घर चूज़ करना था, मैंने जब वो घर चूज़ कर लिया या हम लोगों ने हमारी फैमिली ने या हमारे ख़ानदान ने वो घर चूज़ कर लिया तो अब उसके ऊपर हम क्या ही बहस करें। लेकिन जी, जिन लोगों के घर में वो नहीं गए वो लोगों का एतराज़ जो था वो बन गया। यहाँ पर आगे जो खामोशी उस दूल्हे की जानिब से इख्तियार की गई मेरे ख्याल से वो बिल्कुल पॉजिटिव थी और वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन लेकिन लेकिन जी जहाँ पर आपकी इज्जत की बात हो, कोई आपको टॉन्ट करना शुरू कर दे या फिर आपकी बाउंड्रीज जो हैं उसको वो क्रॉस करने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से वहाँ से आपको झटपट जवाब दे देना चाहिए कि भाई नहीं, रुक जाइए, सब्र कीजिए, यहाँ से बाउंड्री क्रॉस ना कीजिए। क्योंकि जी हम देसी बंदे हैं और देसी बंदे जो है वो झटके से होते हैं, झटका स्टाइल होता है, और जहाँ पर बात बुरी लग जाए वहाँ पर हम दो टोक बात आर या पार वाली कर देते होते हैं। खैर देसी कलाकार सोंगा जी, इसके बाद हमारे पास चंद लम्हे होंगे और उस लम्हों के अंदर हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तो सुनते हैं देसी कलाकार यो यो हनी सिंह की आवाज़ में, और इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे होंगे हमारे पास, तो उन लम्हों को हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अच्छे से बात करके आपसे इजाज़त लें। तो मिलते हैं जी इस गाने के उस पार।
1: बिल्कुल
0: कट दो।

जी तो लिसनर्स, आज का जो आफ्टरनून मिक्स है उसका वक्त जो है अब इख्तिताम की जानिब है, और आज हमने बात की कि कब खामोश होना चाहिए और कब अपनी बात को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखिए, खामोशी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें और अपनी आवाज़ को किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का ज़रिया भी ना बनाएं, और बात करें लेकिन एहतराम से। मेरे ख्याल से बात को जो है एहतराम से करना चाहिए। उसके अलावा आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हदूद के अंदर रह के, लिमिटेशंस में रह के आप अपनी जो है इख्तलाफ़ राय का इजहार भी करें। और फिर उसके अलावा जहाँ खामोशी ज़रूरी हो वहाँ पर खामोशी को भी इज़्ज़त जो है वो बख्शी जाए। ये था आज का हमारा टॉपिक, और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टरनून मिक्स में इसी प्लेटफॉर्म से नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए खुशगवार मूड के साथ, और फिर नई नई नई नई बातों के साथ।

राणा अरसलान अली को इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे दोबारा रेडियो फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम से लाइव। आपका और मेरा, हम सबका रब रखा जी, अल्लाह हाफिज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beat. Wow,
2: FM. Only Tune Super Hit Channel.
3: Fizz on 97.1 FM.
4: It's commercial time.
5: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
10: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का।
12: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
13: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
12: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
13: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
12: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
3: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो.
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहिरीन दी मदद लई सी जी.
9: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
8: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
8: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है. 01156713677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजल 97.1 FM नॉटिंगम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका

होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान, वेलकम खुश आमदे जी हां सब बिस्मिल्लाह पाक खैर राग ले आस्ता लवेस्ता आओ गना दिल तराशे उम्मीद वासी क्या जनाब जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशपाश होकर अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा, बल्कि उम्मीद ही नहीं पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि सभी पर अल्लाह पाक का खास करम होगा और सभी अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होंगे। और मेरी इस उम्मीद और यकीन के साथ आपने मेरा साथ देना है और मुझे बताना है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। वजना बदने चीज को कहते हैं उस्मान खान, बेहद शुक्रिया आप तमाम दर समाधों को जिन्होंने फजा 97.1 FM ट्यून प्लस चूज कर रखा है, रेडियो ट्रांसमिशन पे सुन रहे हैं, एप्लीकेशन पे सुन रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन रहे हैं या फिर डैब पर मुझे सुन रहे हैं, जो जहां जिस तरह भी मुझे सुन रहा है बस अपने होने के एहसास मुझे दिलाना है और मुझे बताना है कि आप फला इब्ने फला फला जगह से मुझे सुन रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कर भी आपको बताएंगे और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आपने आज के प्रोग्राम में क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कौन सी पहेली, कौन सी कहानी, कौन सा वाक्य या कौन सा किस्सा जो आपकी जात से जुड़ा है जो आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। घर में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं, ऑफिस में है, ट्रैफिक की लंबी स्ट्राइक पे बिजी हैं, किस तरह क्या हैं, ये तमाम तर बातें आप मुझे बताएंगे। और जल्दी से सबसे पहले अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसका डायल पैड ओपन कीजिए और मैं आपको नंबर बताता हूँ, उस नंबर को नोट करिएगा। द नंबर इज 0115710097। आई अगेन रिपीट दिस नंबर वेरी स्लोली स्लोली 0115710097। इस नंबर को सेव कीजिए, नोट कीजिए, व्हाट्सएप पर चाहिए और अपना पसंदीदा कलाम, कोई भी खूबसूरत सी गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दोष में लहराता, गुनगुनाता, सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चिकमगाएगा, हजूर सुनती हुई तमाम तेरे खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। सो व्हाई यू वेटिंग, यही वक्त है कि आप प्रोग्राम में शामिल होकर अपने होने का एहसास मुझे दिलाएं और बताएं कि आपने फजा 97.01 FM पर ट्यून कर रखा है प्रोग्राम ड्राइव टाइम। सो आइए इसी ड्राइव टाइम को मजीद खूबसूरत बनाते हैं, एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ प्रोग्राम का करते हैं आगाज। उम्मीद है कि ये खूबसूरत सा ट्रैक आपको जरूर पसंद आएगा। बस इसी ट्रैक के साथ साथ चलेंगे आगे। अगर आपका मूड आज है खराब तो हम करेंगे इसको बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए जनाब, ना तो मैं यहाँ पर कोई पक्की बेचता हूँ, ना ही रंग गोरा करने की करीम, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, जो भी है उसको दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं करता। संजय की जी खूबसूरत से ट्रैक, उस ट्रैक उस पर होगी आपसे मुलाकात, टर्न टू एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड डैब, आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम ड्राइव टाइम।

ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं लड़के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शाम के इन खूबसूरत से वक्त में आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, जरा एक लम्हे के लिए रुककर अपने इर्द गिर्द देखिए। गाड़ियों की कितारें, सड़क पर चलते हुए लोग, दुकानों की रोशनियां, घर वापस जाते हुए लटके हुए या फिर मुस्कुराते हुए चेहरे, हर शख्स कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश में तो है ना। लेकिन अजीब सा एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आज मैं आपसे पूछूं। अजीब तो नहीं, खैर सवाल है, और सवाल जैसा भी हो वो सवाल ही होता है और सुनने वाले पर फर्ज हो जाता है उसका जवाब देना। समझ बताइएगा, हम सब मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में क्यों हैं कि रास्ते को देखना ही भूल जाते हैं। कभी गौर किया आपने कि जब भी कभी आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस से निकलते हैं घर के लिए, मैं सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। तो जब कभी आप निकलते हैं, आपको मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि हमें रास्ते को देखना ही याद नहीं रहता। कोशिश करते हैं कि हम रास्ते को देख सकें, रास्ते के में क्या क्या मनाजिर हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मंजिल पर पहुँचना होता है। बोल जनाब, मैं हूं आपका दोस्त आरजे उस्मान खान और आप सुन रहे रेडियो 97.1 FM एंड डैब। सो आज का ड्राइव टाइम थोड़ा सा होगा मुख्तलिफ, ना हुई लंबी नसीहतें, ना ही वही पुराने सवाल। आज बात होगी उन छोटी छोटी चीजों की जिन्हें हम रोज देखते तो हैं लेकिन कभी उनके बारे में सोचते नहीं। कुछ अजीब सी मालूमात, कुछ हकीकी जिंदगी के वाकयात, बस कुछ हंसी मजाक, और दरमियान में आपके पसंदीदा ट्रैक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। तो सफर जहां भी जा रहा है, रेडियो फजा आपके साथ लेकर चल रहा है। आपके पसंदीदा ट्रैक्स को प्रोग्राम में शामिल करना मेरा सबसे पहला काम होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम में जब भी आपके लिए कोई गाना शामिल करूं वो आपकी प्लेलिस्ट का फेवरेट ट्रैक होना चाहिए। कुछ ओल्डी गोल्डी से गाने भी चलेंगे, कुछ नए गाने भी चलेंगे और कोशिश करेंगे साथ में कुछ रैप शैप भी हो जाए। आई एम नॉट अ गुड सिंगर लेकिन चॉइस अच्छी है, ये बात आपको कुछ वक्त के बाद मानने पर मजबूर कर दूंगा। खैर जनाब, कभी गौर किया है कि कभी किया गौर, हम रोजाना दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि दरवाजे का हैंडल अमूमन एक खास ऊंचाई पर ही क्यों होता है? गेस दैट वाज, हम दुकान पर जाते हैं, कभी गौर किया कि दुकान में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें अक्सर आंखों की सतह के करीब क्यों रखी जाती हैं? यानी कि जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं और आपकी जो भी चीजें दुकान में मौजूद होती हैं वो आपकी आंखों के बराबर में होती है, बहुत ऊंचे नहीं, बहुत नीची नहीं। और फिर कभी सोचिए कि हम जब कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और कभी सोचा कि मेन्यू में कुछ चीजों की कीमत के साथ सिर्फ या खास जैसे अल्फाज क्यों लिखे होते हैं? मानन, दरअसल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजें इत्तेफाक नहीं होती, किसी चीज की जगह रंग, आवाज, रोशनी, हत्ता के अल्फाज भी हमारी तवज्जो मुतासिर करते हैं। और यही चीजें आपकी दुनिया में, आज की दुनिया में कारोबार से लेकर इश्तहारात तक इस्तेमाल होती हैं। सो अगर आप अगली बार किसी भी दुकान में जाएं, जरा इर्द गिर्द गौर कीजिएगा, मुमकिन है कि आपको वो चीजें नजर आ जाएं जो पहले कभी नजर ही नहीं आई आपको। ओके, सीटियां बजाना बुरी बात होती है, सिटी बिल्कुल भी नहीं बजाते, लेकिन वो क्या है ना कि ये तो फिर साथ साथ चलता है। वो मैं कहा करता हूँ अक्सर आपसे कि ऐसा तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में, जब इस तरह के काम करेंगे तो ये तो होगा। कोई बात नहीं जनाब, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और खूबसूरत सी आवाज, उम्मीद है कि ये आवाज आपके दिल को जरूर छुएगी। हाय हाय हाय हाय हाय, कैसा नशा, कैसा नशा भाई, कैसा नशा, मुझे भी पता चले कैसा नशा। ओ चल जा, हो पई, ओ चल गया चल गया चल गया। सवाल जगह जगह इस खूबसूरत सी आवाज को, इसको इस बार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM एंड डैब, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

और वाइट वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके लुटके भाभी अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल और बहुत बहुत खुशामदीद उन तमाम तर प्यारे प्यारे समाज को जिन्होंने अभी फजा 97.1 एफएम को ट्यून प्लस चूज किया है। ओवल जनाब शाम के इस खूबसूरत से वक्त में आप जहां कहीं भी मौजूद हैं एक मरतबा मेरी आवाज की तरफ ध्यान दीजिए भाई जी। बोल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उम्मीद है कि सफर महफूज है। अगर आप दफ्तर से वापस आ रहे हैं तो शायद आज के काम का आखिरी मरखला चल रहा होगा। बोल अगर आप किसी दुकान पर बैठे हैं तो मुमकिन है कि कस्टमर्स की आमदोरफ्त जारी और सारी होगी, पैसे वैसे छाप रहे होंगे। और अगर ये भी नहीं तो यकीनन आप इस वक्त घर पर मौजूद होंगे, शायद चाय का एक कप आपके हाथ में होगा और आराम से रेडियो सुन रहे होंगे। ओवल जो भी कर रहे हैं जहां भी हैं बस इतना याद रखिएगा कि ये वक्त जो है ये आपका और हमारा है, क्योंकि आपके साथ है रेडियो 97.1 एफएम डैब आल्सो मी आरजे उस्मान खान। ओवल जना प्रोग्राम आज का थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और बल्कि है भी ओवल, क्योंकि आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुछ ऐसे ही मालूमात भी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर आप ये एक बार सोचेंगे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। वल कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आपके पास हो लेकिन आपने कभी किसी से पूछे ना हो, कुछ ऐसी बातें जिन पर आप हंसेंगे, कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर या अपनी जिंदगी की याद दिला दें। और फिर सबसे बढ़कर आपकी आवाज, आपके पैगामात और आपके मैसेजेस। अच्छा वैसे पैगामात और मैसेजेस सेम चीज होती है लेकिन खैर कोई बात नहीं। ओवल जनाब आपके पैगामात हो, आज जरा रेडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मुमकिन है जो मैं नेक्स्ट ट्रैक शामिल करने वाला हूँ वो नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम हो, ये भी मुमकिन है कि अगला सवाल आपके नाम हो। खैर ये भी मुमकिन है कि आज की कोई एक बात आपको पूरे दिन में सबसे ज्यादा याद रह जाए। सुबह ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हवा को अंदर आने दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और कहिए चलो भाई शुरू करते हैं। जी हाँ जनाब, ये है ड्राइव टाइम आपके अपने मेजबान उस्मान खान के साथ। शामिल करें एक और खूबसूरत सी आवाज, इस आवाज के उस पार चलेंगे एक छोटी सी प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने पर, जब कमर्शियल ब्रेक से वापिस लोड कराएंगे फिर मजीद इसी खूबसूरत से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही का साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आपको क्या कहते हैं आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका कर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताऊंगा उन लोगों को जिन लोगों ने अभी फजाने 97.1 एफएम को ट्यून किया। मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए, द नंबर इज 0115 7100971 0115 7100971। इंतजार करूंगा आपके पैगाम का, मर्जी हो तो कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस तो है कि रेडियो पे लाखों लोग सुन रहे हैं। सो चलिए करते हैं इंतजार, तब तक सुनते हैं ये खूबसूरत सी आवाज, मिलते हैं इसके उस पार, रहिएगा मेरे साथ, आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: टर्न इट अप, रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: वंस अगेन वेलकम बैक जनाब, खुश आमदे दोस्तों। चलिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम दर समाधों का बेहद शुक्रिया जो कमर्शियल ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम कहेंगे आपको, जी आनु सत बिस्मिल्ला भी ले लीजिए, ले चुके। चलिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक जरा सा काम करते हैं। वजला मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कैसे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो तकरीबन हर शख्स एक जैसा ही देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई आपका दिन कैसा गुजरा। आज सुबह जब आंख खुली तो दिल खुश था, या फिर अलार्म बजा तो दिल ने कहा कि यार अभी तो सोया था, या फिर दफ्तर पहुंचते ही काम का पहाड़ सामने आ गया। क्या आज कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने आपको हंसा दिया? क्या किसी ने आपकी तारीफ की? क्या किसी ने आपका मूड खराब किया? क्या आज किसी पुराने दोस्त का फोन आया? या आज का दिन बस मामूल के मुताबिक गुजरा? सुबह उठे, काम किया, खाना खाया, लोगों से मिले, फिर वापस घर और अब रेडियो। वजना असल में हमारी ज़िंदगी का ना बड़ा हिस्सा ही नहीं मामूल के दिनों पर मुश्तमिल होता है, और हम कोशिश करके भी इनको चेंज नहीं कर पा रहे। हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि जब छुट्टी होगी तो मज़ा आएगा, जब पैसे ज़्यादा होंगे तब मज़ा आएगा, जब कभी किसी सफ़र पर जाएंगे तब मज़ा आएगा, या जब नया घर होगा तब खुशी होगी। लेकिन कभी कभी ना ये हमें याद ही नहीं रहता कि ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आज में गुजर रहा है। आज की चाय भी तो ज़िंदगी है, आज दोस्तों से होने वाली 5 मिनट की बात भी तो ज़िंदगी है, आज गाड़ी चलाते हुए सुना जाने वाला पसंदीदा ट्रैक भी तो ज़िंदगी है, आज घर पहुंचकर बच्चे का दरवाजे पर इंतज़ार करना भी तो ज़िंदगी है, और कभी कभी आज का सिर्फ सुकून से गुजर जाना बहुत बड़ी नेमत लगता है। सो वेल, आज कोशिश करें, सोचें ज़रा, अपने दिन को रिवाइंड करें और बताएं कि आज अपने दिन को एक नंबर देना हो तो वो 10 में से कौन सा होगा, 1, 5, 8 या पूरे 10? और अगर आपको लगता है कि नंबर कम है तो कोई बात नहीं, दिन खत्म होने में अभी वक्त बाकी है, मुमकिन है कि ड्राइव टाइम आपके आज के दिन को चंद नंबर मजीद दे दे, हो सकता है ना। जरा सोचिएगा और मुझे बताइएगा काउंट करके कि कितने नंबर देंगे आज के दिन को आप। और इसके लिए करना कुछ इतना है कि बस जो नंबर आपको बताया गया इस नंबर पे मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं पता तो लीजिए, सुन लीजिए, द नंबर इज 0115710097। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी आदत की तरफ जो शायद हम सब में थोड़ी थोड़ी मौजूद है, और वो आदत होती है चीजें जमा करने की आदत। जरा सोचिए और बताइए कि हो सकता है ना कि किसी के पास कुछ पुराने सिक्के पड़े हों, किसी के पास कुछ पुरानी टिकटें पड़ी हों, किसी के पास पुराने मोबाइल फोन हों, किसी के पास पुराने कपड़े इतने के अलमारी कहती है बस कर भाई, किसी के पास जूते, किसी के पास किताबें, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में कोई खाली डिब्बा देखे तो फौरन कहते हैं इसे फेंकना नहीं काम आएगा। यकीनन आप इनमें से कोई एक काम तो करते होंगे, अगर आपको भी मेरी तरह डिब्बे जमा करने का शौक है तो फिर वो डिब्बा 5 साल तक वहीं पड़ा रह जाता है मेरी तरह। कभी गौर किया है कि हम अक्सर ऐसी चीज़ें भी संभाल के रखते हैं इस्तेमाल करने वाली, जिनका हमें हकीकत में कोई इस्तेमाल नजर ही नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि चीज़ों के साथ यादें जुड़ी होती हैं। कोई एक पुरानी घड़ी शायद किसी खास शख्स ने दी हो, शख्स एक खास शख्स ने दी हो, कोई एक पुराना खत शायद किसी ऐसे दोस्त का जो अब जिंदगी में मौजूद ही नहीं, कोई एक पुरानी तस्वीर शायद ऐसे वक्त की हो जब हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन हम खुश थे यार। इसीलिए बात चीजें कीमत में मामूली तो होती हैं लेकिन हमारे लिए कीमती बहुत होती हैं। एक पुरानी चीज हाथ में आती है और अचानक दिमाग हमें कई साल पीछे ले जाता है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है? कोई ऐसी चीज जिसकी शायद मार्केट में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आप उसे फेंक नहीं सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर चलिए, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई नस्ल ने शायद देखी ही नहीं, यू नो, हमारी आपकी जनरेशन जो है, कुछ पुरानी चीजें। याद करें, कभी जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, लोग खत लिखते थे। खत, लेटर। आज हम किसी को अगर पैगाम भेजते हैं और अगर 5 मिनट में जवाब ना आए तो सोचना शुरू कर देते हैं, नाराज है क्या। और आपको पता है कि पहले जब खत भेजा जाता था, फिर कई दिन इंतजार करना पड़ता था, फिर कहीं जाकर जवाब आता था, और जवाब खोलने का भी एक अपना ही मजा होता था। फिर वो दौर गुजरा खत का, तो फिर कैसेटें आना शुरू हुई, कैसेटों का जमाना आया, फिर हम अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए कैसेटें खरीदा करते थे, और अगर गाना बहुत पसंद आ जाए तो कैसेट बार बार चलती थी, और अगर टेप ही खराब हो जाए तो अरे भाई जल्दी से पेंसिल निकालो और टेप को हाथ से घुमाओ। उफ, आज के बच्चे शायद कहीं भूल चुके हैं या उनको पता ही नहीं है इन चीजों का। और मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो भी यही कहेंगे, ये क्या हो रहा है बच्चे, जो हो रहा है आपकी बात आपके जहन से बहुत दूर की बात है। खैर जी, फिर आपको पता है CD आई, फिर MP3 आई, फिर मोबाइल आया, और आज एक पूरा गाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारी जेब में है। लेकिन अजीब बात है कि सहूलत बढ़ती गई और इंतज़ार कम होता गया, और शायद इसी वजह से बाज पुरानी चीज़ों की याद आज भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। भला आपके ख्याल में वो कौन सी चीज़ है पुरानी जो दोबारा वापस आनी चाहिए? कैसेट, लेटर, पुराना रेडियो या कुछ और? हाय, अगर पुरानी बातें चल ही पड़ी हैं तो क्यों ना कोई एक पुराना सा गाना आपको सुनाया जाए। और फिर ये अगर पुराना सा गाना होगा तो हमारे अंकल और आंटीज जो हमें सुन रहे हैं उनको भी तो पसंद आएगा ना। लेकिन शर्त वही है कि अगर हमारे अंकल और आंटीज हमारे साथ साथ हैं तो उन्हें अपने होने का एहसास भी मुझे दिलाना है, मुझे बताना है कि आप हमारे साथ हैं, नॉटिंघम से ताल्लुक है इसके गिर्द निर्द। तो वेल, जब तक आप मुझे बताते हैं तब तक आपको सुनाएंगे अपने अंकल और आंटीज को, खास तौर पर उन तमाम धर लोगों को जिनके मतलब पुरानी बातें कर रहे थे। हाय, अच्छा वेल, 90s के ट्रैक्स का एक अपना ही मजा है, और मैं अगर एक एक को प्ले करने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और फिर चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आपको सुनाऊं। सो आइए एक मैशअप को लेकर चलते हैं।
1: तारों का चमकता गहना हो,
0: बड़ी खूबसूरत सा रोमांटिक समैशअप है जी, आप तमाम तरुण समातों के लिए जिनको पुराने ट्रैक्स पसंद हैं। सो इसके बाद होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड आल्सो डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

ऑरिजिनल वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आप भूल तो नहीं गए? यकीनन आपको याद होगा और याद रहना भी चाहिए। 90s के ट्रैक को शामिल किया। उम्मीद है कि हमारे तमाम तरंगल और आंटी इस बात से खुश हो गए होंगे कि उनके दूर के ट्रैक जो हैं वो चल गए, कुछ तो पुरानी यादें वापिस आई होंगी। चलिए काम करते हैं जनाब, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। एक शख्स ने रोजाना दफ्तर से घर जाते हुए एक ही रास्ते से गुजरता था। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े शख्स को देखा। बूढ़ा शख्स रोजाना वहीं बैठा होता। एक दिन उसने पूछा कि आज बात करते हैं, उसने सोचा ना ऐसा। वो गाड़ी से उतरा और पूछा कि बाबा जी आप यहाँ रोज बैठते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हाँ बेटा। फिर उसने पूछा कि किसी का इंतजार है? बाबा जी ने कहा नहीं। वो हैरान हुआ और फिर रोज यहाँ क्यों आते उसने पूछा। तो बाबा जी ने कहा कि लोगों को आते जाते देखता हूँ, हर शख्स कहीं ना कहीं पहुँचने की जल्दी में है, मैं अब जल्दी में नहीं हूँ। ये जुमला शायद बहुत सादा है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। हम सब किसी न किसी चीज़ की जल्दी में ही हैं। जल्दी घर पहुंचने की हो सकती है, जल्दी काम ख़त्म करने की हो सकती है, जल्दी पैसे कमाने की हो सकती है, कामयाबी जल्दी मिल जाए, अगला स्टेप लेने की जल्दी होती है। और कभी कभी हम इस कदर जल्दी में होते हैं कि मौजूदा लम्हा गुजर जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। ज़िंदगी शायद सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है दोस्तों, रास्ता भी ज़िंदगी है। इसलिए अगर आज ट्रैफिक में फंसे हैं तो सिर्फ ये ना सोचिए कि कब निकलूंगा। बिल्कुल रेडियो 97.1 एफएम के साथ है तो इसको सुनिए, म्यूजिक को सुनिए। किसी अपने को फ़ोन करें और इस वक्त को भी वक्त ही समझें। वो जनाब देखते देखते पता नहीं चला कि वक्त कितना गुजर चुका है। आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड डैब अपने मेजबान उस्मान खान के साथ। और अगर आप आज हमारे साथ पहली बार शामिल हुए हैं तो खुश आमदेद कहेंगे आपको, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो दिल से शुक्रिया। आप जानते हैं ना कि रेडियो की असल ताकत यही है कि एक शख्स माइक के सामने बैठा होता है और दूसरी तरफ ना जाने कितने लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हुए उसे सुन रहे होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं, दुकान पर सुन रहे हैं, दफ्तर में सुन रहे हैं, शायद आप में से कोई ऐसा भी हो जो आज पहली मर्तबा मेरी आवाज सुन रहा हो। सो जो भी नए सामीन अभी शामिल हुए हैं, बताते चले मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड डैब। वाली इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताते चलूं कि कमर्शियल ब्रेक और आपके दरमियान, बल्कि मेरे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक हायल होने वाली है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। सो अब ये वक्त हमें बता रहा है कि या तो एक अदद प्यारा सा ट्रैक आपको सुना दिया जाए या फिर बातों को इसी तरह जारी और सारी रखा जाए। फिर आखिरी फाइनली फैसला ये हुआ कि खूबसूरत सा म्यूजिक आपको सुनाया जाए। अगर तो आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो थोड़ा सा शीशा नीचे कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Radio station for people who love music. 107.1 FM.

ऑलराइट वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके लड़के वापस एक छोटी सी प्यारी सी चुनमुन सी मुश्किल देखिए उस पार अपने गाने को किया मुकम्मल। इस गाने को सुनते सुनते मजा ही इतना आ रहा था कि मेरे दिल ही नहीं किया कि मैं इस गाने को आधा अधूरा छोड़ दूं। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले हमने इस गाने को शामिल किया, बचा खोचा हमने कमर्शियल ब्रेक उस पार शामिल कर दिया। मोबाइल जनाब ने आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है ड्राइव टाइम। बेहद शुक्रिया आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM डैब के लाइव स्टूडियो से अपने मेजबान उस्मान खान की आवाज। आधा प्रोग्राम गुजर चुका है और जो बाकी रह गया उसको मजीद खूबसूरत बनाएंगे। आपके और अपने दिमाग को थोड़े से काम में लगाएंगे। जरा सोचिएगा, आपने कभी महसूस किया कि जब आप कोई नया लफ्ज सीखते हैं, यू नो एक वर्ड सीखते हैं, और अचानक वो लफ्ज आपको हर जगह नजर आने लगता है। मसलन आपने कोई नई गाड़ी देखी, लेट्स सपोज अगर आपने कोई नई गाड़ी अगर आपने कोई देखी है और पहले कभी आपने उसे खास तौर पर नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सड़क पर हर दूसरी गाड़ी वही है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हालांकि गाड़ियां अचानक नहीं बढ़ती, आपके दिमाग ने उस चीज़ को ज़्यादा नुमाया करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब हम किसी मौजू के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमें उससे मुतलिक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। इसी वजह से कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और अगले ही दिन किसी दोस्त से उसी मौजू पर बात हो जाती है, हमें लगता है यार ये कैसा इतफाक हुआ।

0: लेकिन हमारा दिमाग पहले ही उस चीज पर ज्यादा तवज्जो दे रहा होता है। इंसानी दिमाग वाकई बड़ी अजीब सी चीज है। हम जो देखते हैं हमेशा वही नहीं होता, लेकिन जो हमारे सामने सबसे ज्यादा मौजूद हो कभी कभी हम वही ज्यादा देखते हैं जिस पर हमारी तवज्जो पहले से लगी होती है लेकिन हमें पता नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में अपनी तवज्जो का खास तौर पर ख्याल रखना भी जरूरी है। अगर हर वक्त बुरी चीजें देखेंगे, बुरी खबरें सुनेंगे तो दुनिया बुरी लगने लगेगी। अगर हर वक्त दूसरों की कामयाबी देखेंगे तो अपनी जिंदगी कम लगने लगेगी। और अगर हर वक्त अपनी कमियों पर तवज्जो देंगे तो अपनी मौजूदा नेमतों पर कभी भी आपकी नजर नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है मेरे सामईन, कभी कभी दिमाग को भी कहिए भाई जरा इधर भी देख। वेल जनाब, अब थोड़ी सी संजीदगी खत्म करते हैं, बाहर निकलते हैं इन बातों से। मुझे लगता है कि प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन ज्यादा और एंटरटेनमेंट कम हो रही है। सो आइए बात करते हैं अपनी एशियन कम्युनिटी के बारे में। वो साउथ एशियन कम्युनिटी जो इस वक्त मुझे सुन रही है, जो मेरे साथ साथ है, हमारी एशियन जितनी भी फैमिलीज हैं ना इस वक्त जो मुझे सुन रही हैं, साउथ एशियन फैमिलीज, सब के घरों में ना एक चीज बड़ी मशहूर कॉमन होगी, और जानते हैं वो क्या? वो है जनाब मेहमानों के आने से पहले की सफाई। उफ, और ये सफाई कोई आम सफाई नहीं होती मेरे भाई। अगर एक आम दिनों में अगर घर थोड़ा सा बिखरा होना तो चलो कोई बात नहीं है, खैर है, लेकिन जैसे ही फोन आए कि बस 10 मिनट में पहुंच रहे, मुझे तो लगता है घर में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। सोफे के कुशन सीधे, मेज साफ, पर्दे ठीक, जो चीज नजर नहीं आनी चाहिए वो कमरे में, और जो चीज रखनी थी वो अलमारी में। और फिर घर का एक बंदा ऐसा भी होगा जो कहेगा ये चीजें यहां क्यों रखी है। मेहमान आ रहे हैं भाई, खुदा का खौफ करें, मेहमान चीजें देखने आ रहे हैं या घर का मुआयना करने? और उसके बाद फिर जब चाय का मरखला चलता है, चाय कितनी बनाऊं, किचन से आवाज आती है, यू नो, चाय कितनी बनाऊं, पता नहीं, देखो कितने लोग हैं, बस थोड़ी ज्यादा बना लो। और फिर हमेशा इतनी चाय बन जाती है कि आखिरी कप का कोई वारिस ही नहीं होता। फिर वही चाय दोबारा गर्म होती है, फिर दोबारा, और आखिर में रहने दो, नहीं बना लेते हैं। ये सारी चीजें जो ना घरों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, और शायद यही खुशियां बाद में सबसे ज्यादा याद आती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान था, हर वक्त अपने मुस्तकबिल की फिक्र में रहता था। वो सोचता था कि जब मेरी नौकरी अच्छी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। फिर नौकरी मिल गई और उसने सोचा कि जब मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो सुकून मिलेगा। आमदनी भी बढ़ गई, फिर सोचा अब अपना घर होना चाहिए, घर भी हो गया, फिर गाड़ी, फिर मजीद काम, फिर मजीद जिम्मेदारियां। फिर एक दिन वो अपने पुराने मोहल्ले में गया। वहां एक छोटी सी दुकान के बाहर चंद लोग बैठे थे। वहां उसे अपना पुराना दोस्त नजर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिले। बातों बातों में दोस्त ने पूछा कि याद है हम यहाँ शाम को बैठा करते थे? वो मुस्कुराया, हाँ। दोस्त ने कहा तब हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हम रोज हंसते थे। लड़का खामोश हो गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जिंदगी भर सुकून तलाश करता रहा और शायद सुकून उसे बहुत पहले मिल चुका था, बस उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि वो सुकून है। तो सामीन, कभी कभी हम जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमने जो हासिल किया है उसे महसूस भी करना है। फ्यूचर के लिए मेहनत ज़रूर करें, यह नहीं कहता कि आप अपने फ्यूचर को मुस्तकबिल को बेहतर ना बनाएं, ज़रूर मेहनत करें, लेकिन मौजूदा लम्हे को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कभी ना कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर जब आता है तो वो भी आज बन जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे और मेरी इस बात को फॉलो भी करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सी आवाज़। उम्मीद है कि ये आवाज़ आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। शुभ की आवाज, ट्रैक सफर, हल्का सा मैशअप। उम्मीद है कि आपकी प्लेलिस्ट में आज ये गाना भी ऐड होने वाला है। सेंटी लोगों के लिए सेंटी, रोमांटिक लोगों के लिए रोमांटिक। बाकी सुनकर मुझे बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा।
1: सुबह का जादू।

अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब दिल लौटने के नहीं। छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को मुझे तो जमाना हो।

0: ओके जनाब, लेकिन मैं ये आपको गाना नहीं सुनाने वाला क्योंकि ये गाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारे टोन एंड टेम्पो से मैच नहीं करता। तो जब हमारे टोन एंड टेम्पो से मैच नहीं करेगा तो हम इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद वैसे कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मेरे साथ साथ रहने वाले हैं। प्रोग्राम में नए आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है ड्राइव टाइम। और बेहद शुक्रिया आपका फजा 97.1 एफएम की ट्यून प्लेस चूज करने का, शाम के ढलते हुए खूबसूरत से सायों में मेरा साथ निभाने का। अभी अभी मैंने शाम की बात की, रोजमर्रा जिंदगी की बात की, कुछ मालूमात आप तक पहुंचाई, थोड़ी बहुत घर की सियासत भी हुई, लेकिन अब अगले हिस्से में बात होगी जनाब लोगों की आदतों की। तो जरा रेडी स्टेडी एप्पल गो हो जाइए, और यकीन करें कुछ आदतें ऐसी हैं जो तकरीबन हर इंसान में होती हैं, बस आज उन्हीं का खुलासा करेंगे। और आदतों से मतलब, आपने कभी मोबाइल तलाश किया जिसके मोबाइल आपके हाथ में था? कभी इतफाक हुआ ऐसा कि मोबाइल हाथ में लेकर सोच रहे हो कि मेरा मोबाइल कहाँ गया, ढूंढ रहे हो? मेरा ख्याल है कि दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसानी तजुर्बात में से ये एक है कि जब इंसान कहता है कि मेरा फोन कहाँ पे है, तो दूसरा जब उसे बताता है कि आपके हाथ में है, फिर बंदा कहता है ओ। और एक और आदत होती है कि जब कभी हम घर से निकलने के बाद दरवाजा बंद करते हैं ना, फिर दो कदम चलते हैं और दिल कहता है कि यार दरवाजा बंद किया था। फिर वापस जाते हैं, दरवाजा देखते हैं, बंद होता है, फिर वापस आते हैं, फिर कुछ देर के बाद गाड़ी लॉक की थी, फिर दोबारा चेक। यकीन करके ये सिर्फ एक मेरी या आपकी आदत नहीं है, हम सब की दिमाग में कभी ना कभी ये छोटा सा शक जरूर आता है। और एक और चीज कि हम किसी को फोन करने लगते हैं, फिर सोचते हैं पहले पैगाम भेज देता हूँ, इनके मैसेज करता हूँ, और मैसेज भी क्या कि मसरूफ हो, जब सामने से जवाब आता है कि नहीं, तो फिर हम अगले से सवाल करते हैं कि फिर फोन क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसके मैसेज के आदि हो चुके होते हैं। अब थोड़े से संजीदा हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा। एक सवाल करता हूं आपसे, फर्ज करें कि आपको कल सुबह उठकर जिंदगी का एक नया बाब शुरू करना है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपको, जबकि आपको अपनी पिछली जिंदगी का तजर्बा भी हासिल है, लेकिन आप दोबारा शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप कुछ मुख्तलिफ करेंगे? क्या आप कोई और काम चुनते, किसी और शहर में जाते, किसी से पहले बात कर लेते, किसी को पहले माफ कर देते, किसी मौके को हाथ से जाने ना देते, या फिर आप कहते नहीं मैं दोबारा भी यही जिंदगी जीता? ये सवाल थोड़ा सा दिलचस्प तो है, और वो इसलिए क्योंकि हर इंसान के पास कुछ काश, अगर, मगर जरूर होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि माजी का काम सिर्फ ये बताना है कि हम कहां से आए हैं, फ्यूचर का काम अभी लिखा जाता है। इसलिए अगर कोई काम आज भी दुरुस्त किया जा सकता है तो उसे काश ना बनने दीजिएगा। फोन करना है कर लीजिए, माफी मांगनी है मांग लीजिए, किसी का शुक्रिया अदा करना है आज करते हैं। कोई ख्वाब है, कम से कम उसकी तरफ पहला कदम तो उठाइए ना, क्योंकि बहुत से ख्वाब इसलिए नहीं मरते कि वो नामुमकिन होते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें हमेशा कल के हवाले करते रहते हैं। सुबह आज से तहिया कर लीजिए, अपने साथ इरादा कर लीजिए, वादा कर लीजिए कि कोई भी ख्वाब कल पर नहीं छोड़ना, कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना, जो है वो आज ही है। सोचिए कौन है जिससे आप माफी मांगना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा टाल देते हैं। उठाइए फोन कीजिए उसे और मांग लीजिए माफी, किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं मानता, कर लीजिए। उम्मीद है कि मेरी इस बात से आपके जहन में कोई ना कोई तो आया होगा। चलिए अभी ना कीजिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कर लीजिएगा, तब तक आपको मजीद सोचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सोचने पर ज्यादा वक्त लगाएंगे तो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ज्यादा सोचते नहीं है, जो जहन में आया बस कर दीजिए। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं हमेशा ये कहा करता था कि जो होगा देखी जाएगी, वक्त आएगा तो देखी जाएगी। और न सिर्फ मेरी बल्कि बहुत से लोगों की ये बुरी आदत होती है। ये बुरी क्यों है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की मेरी तरह ये बुरी आदत ज़रूर है कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा, देख लेंगे जब वक्त आएगा। यकीन करें कि मैंने ये ज़ाती तजुर्बा किया है कि जब वक्त आता है फिर देखने नहीं होता, फिर बंदा पछताता है कि काश उस वक्त ये चीज़ कर लेता। जी हाँ, जब वक्त आ जाए तो फिर देखने नहीं होता, इसलिए कल भी मत छोड़िएगा, वक्त आने पर मत छोड़िएगा। जो चीज़ें आज आपके पास हैं उनको अपना लीजिए, कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कर लीजिए। खैर, उम्मीद है कि इतना भाषण आज के लिए काफ़ी है। अब ज़रा खेलते हैं जनाब। मैं आपके सामने तीन चीज़ों का नाम लूँगा, आपने फ़ौरन बताना है कि इनमें से आप किसके बगैर एक हफ्ता गुजार सकते हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए, मैं आपको तीन चीजों के नाम बताऊंगा और आपने मुझे बताना है कि इन तीनों में से किस चीज के बगैर आप एक हफ्ता गुजार सकते हैं, यानी कि एक वीक के लिए आपको वो चीज छोड़नी होगी। सफर्सिंग मोबाइल फोन, सेकंड चाय कॉफी एंड थर्ड इंटरनेट। आसान नहीं है ना जवाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए और बताइए कि गाड़ी, टीवी, सोशल मीडिया, इन तीनों में से कोई एक चीज छोड़नी हो तो। नहीं समझ आई, चले आगे बढ़ते हैं। सोचिए, चाय तो हो गई थी, चॉकलेट की जानिब चलते हैं। चलिए, बहुत से लोगों को चॉकलेट नहीं भी पसंद होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को चॉकलेट पसंद होती है। बहुत ज्यादा नहीं भी खाते तो एटलीस्ट एक आध बाइट तो ले ही लेते हैं ना। तो सोचिए, चॉकलेट, बिरयानी या फिर पिज्जा। अभी भी नहीं, चलिए आखिर पे आते हैं। पैसा, नींद, सुकून। अब जरा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जरूरी है, नींद जरूरी है, और सुकून वो तो सब कुछ चाहिए ना भाई। लेकिन असल सवाल यह है कि हम सुकून खरीदने के लिए कितनी चीजें खरीदते रहते हैं और फिर सुकून भी नहीं मिलता। शायद सुकून चीज नहीं है, ये तो एक कैफियत होती है ना। सोचना पड़ेगा, सोचिएगा और बताइएगा। बताने का तरीकेकार वही पुराना, व्हाट्सएप का नंबर 01157100971। चाहे तो कीजिए कॉल, नहीं दिल मानता तो कर दीजिए मैसेज। वेल जनाब, शाम तो थोड़ी सी गहरी होती जा रही है, दफातर खाली होने लगे हैं, सड़कों पर घर जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ लोग आज के काम से मुतमईन तो होंगे, कुछ सोच रहे होंगे यार आज तो कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ। बट एक बात याद रखिएगा, हर दिन का कामयाब होना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ गुजारने के लिए होते हैं, कुछ दिन सीखने के लिए, कुछ दिन आराम करने के लिए और कुछ दिन गलती करने के लिए। और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब इंसान सिर्फ ये चाहता है कि बस आज का दिन खत्म हो जाए। और अगर आज आपका दिन ऐसा था तो अपने आप पर सख्त ना हो जाए, क्योंकि कल एक नया दिन है। जिंदगी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती जनाब, कभी तेज, कभी आहिस्ता और कभी रुक कर, लेकिन सफर जारी रहता है। बस इसी सफर को जारी और सारी रखने के लिए प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ओह माय गॉड, ये घड़ी मेरा और आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि हमारे दरमियान आ रही है एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती, कमर्शियल ब्रेक। सो हम ट्रैक शामिल करेंगे कमर्शियल ब्रेक के उस पार, सो डोंट कन्वे, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट रिस्वान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 एफएम एंड
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: Radio Bazaar 97.1 FM.

All right, once again, welcome back. आ चुके लुटके वापिस. उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं भी आपके साथ साथ हूँ. मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान छोटी सी बैरिस्ट जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक अपनी एंजॉय की और कमर्शियल ब्रेक के उस पार बंदा इना चीज हाजिर खिदमतगार. सुबह मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज के प्रोग्राम के अहतमाम की तरफ बढ़ने से पहले अभी कुछ वक्त बाकी है. जितना वक्त बाकी है इस वक्त को मजीद खूबसूरत हम लोग बनाएंगे आपके साथ साथ रहकर. जिन लोगों ने अभी भी फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस यूज किया आपको थैंक यू सो मच भी कहेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए. एवरी मंडे टू फ्राइडे आप सुनते हैं अपने मेजबान उस्मान खान को प्रोग्राम ड्राइव टाइम में. सुबह से टाइम जहन में रख लीजिएगा 5 से 7 मिनट और आपका साथ रहता है. सो इस साथ को मजीद खूबसूरत आप लोग खुद मिलकर बनाते हैं. अगर आप नॉटिंगम के इर्द गिर्द से हैं और आप तक ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पाते या कहीं दूर जाना चाहते हैं लेकिन मेरा प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते या किसी अपने प्यारे को बताना या सुनाना चाहते हैं सो लाइव स्ट्रीमिंग का आसरा लीजिएगा, सहारा लीजिएगा. गूगल पर जाइएगा और जाकर लिखिएगा radiofaza.co.uk. नहीं तो जो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं दुनिया की किसी भी किसी भी जगह मुझे आसानी से सुन लीजिएगा. एप्लीकेशन पर जाइएगा, एप्लीकेशन तो आपको बाद में मिलेगी, पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पर. जी हाँ, प्ले स्टोर या एप स्टोर पर जाइए, वहां पर जाकर लिखिए रेडियो फजा 97.1 FM. पर्पल से बैकग्राउंड के साथ गोल्डन माइक वाली एक खूबसूरत सी एप्लीकेशन आपको मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी जगह आसानी मुझे सुन सकते हैं आप. बशर्ते इंटरनेट आपके पास होना चाहिए. ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं जनाब डैब पर. अपनी गाड़ी में फजा डैब ट्यून कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा. ना सिर्फ मुझे सुनिएगा बल्कि 24/7 आप हमारे साथ रह सकते हैं. बाकी तमाम तरह आरजेस के प्रोग्राम भी आप जरूर सुना करें और उसमें पार्टिसिपेट भी किया करें. ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, हाल बता आपके नाम ट्रैक जरूर लग जाएगा. इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट भी मिलती रहेगी, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा. और जो नंबर मैं आपको बताता हूँ उस नंबर को सेव कर लीजिए, जब आपका दिल करे बस एक पोला सा मैसेज कर दीजिएगा. प्रोग्राम किसी का सुन रहे हैं नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, जब भी कभी कोई भी गाने का मूड हो तो आप बस एक पोला सा मैसेज कर दीजिएगा, आपके नाम पर ट्रैक शामिल हो जाएगा. जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नंबर नहीं सेव किया तो. द नंबर इज 0115710097. रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से इसको सेव कर लीजिए.

सुबह जनाब काफी टाइम हो गया हमने कोई पंजाबी ट्रैक शामिल नहीं किया, मतलब किया है लेकिन उस तरह से नहीं किया, तो क्यों ना अब थोड़ा सा पंजाबी हो जाए। की कहंदे हो पाजी? अच्छा पंजाबी मुझे कुछ खास आती नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पंजाबी की तरफ तवज्जो कम ही दूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है कि जब भी पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ तो अली भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पंजाबियों का दिल ना ही तोड़ूं। इसलिए हम पंजाबी में बात कम कम करते हैं।

लीजिए जनाब, एंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत सी आवाज को। इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। अमेगे भाई जी फजास्तान में शरीक देवड़ विजय महंत वड़नाल थोड़ा अपना मेजबान उस्मान खान। तो सुन रहे हो जनाब प्रोग्राम ड्राइव टाइम। साढ़े प्रोग्राम चाले काली काफी वक्त पे है थे मुगी पंजाबी खत्म तमाम शुद्ध। इतनी मुश्किल से मैंने रट्टा लगाया हुआ है। खैर आप ही जाएगी जगह इस खूबसूरत से म्यूजिक को मिलते हैं इसके उस पार। रहिएगा मेरे साथ, आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

ओके जनाब, अब आते हैं आज के प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जहां ज्यादा जरा रफ्तार कम नहीं करनी बल्कि बातें और बढ़ानी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त सफर में हैं, कुछ काम से वापस आ रहे हैं, कुछ दुकान बंद कर रहे हैं, कुछ घर पहुंचने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं कहेंगे कि भाई हम तो अभी आधे रास्ते में, मैं की करा तुसी लेट हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि रास्ता देखना है, रेडियो सुनना है और मेरी बात पर हंसना भी है, क्योंकि सिर्फ मुंह से हंसना है, गाड़ी से नहीं। खैर, हमारे यहाँ कभी कभी ड्राइविंग भी ऐसी होती है कि बंदा सोचता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ या जिंदगी और मौत के दरमियान मुज़ाकरात कर रहा हूँ, खास तौर पर जब सामने वाला हाय दश ड्राइविंग करता है। खैर जी, ये सारी वो तमाम तर चीज़ें हैं जो जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन सफरी तो हमारी सड़कों की खूबसूरती है जनाब। यहाँ पर हर सफर जो है अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कभी ट्रैफिक की कहानी, कभी किसी अजीब ड्राइवर की कहानी, कभी किसी ऐसे गाड़ी की कहानी जिसके पीछे पूरा एक फलसफा लिखा होता है। जैसे जब कभी हम रहा करते थे ना पाकिस्तान में, मैं रहता था तो वहाँ पर, जितने लोग पाकिस्तान से मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर ना रिक्शे जो चलते हैं ऑटो, उनके पीछे ना पूरा पूरा एक जुमला लिखा होता है। कभी किसी वो पाकिस्तानी या इंडियन ट्रक के पीछे एक ऐसा जुमला कि बंदा ट्रैफिक में खड़े खड़े ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है। मतलब जैसे जैसे जैसे जैसे वो था ना, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, बंदा सोचता है भाई पहले मुझे इस ट्रैफिक से तो निकलने दो, फिर जन्नत की हवा भी देख लेंगे। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं आपको, हम इंसान जहां भी जाते हैं ना अपने साथ अपनी आदतें जरूर ले जाते हैं। आप किसी के घर जाएं, वहां जूते एक जगह रखे होंगे, लेकिन आपके घर में शायद जूते दरवाजे से लेकर कमरे तक पूरा रास्ता बना रहे हों। किसी के घर में खाने का वक्त मुकर्रर होगा और किसी घर में सवाल होगा खाना कब खाना है, और फिर जवाब आता है बस थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी थोड़ी देर वो होती है ना जो पैजन कदी कदार दो दो घंटे भी होते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर घर में एक जैसी होती है, वो होता है टीवी का रिमोट। रिमोट एक ऐसी चीज है जिसकी असल अहमियत उस वक्त मालूम होती है जब वो गायब हो जाए। पूरा घर तलाश करेगा, सोफे उठाएंगे, कुशन उठाएंगे, बेड के नीचे देखा जाएगा, मेज के नीचे देखा जाएगा, और आखिर में पता चलेगा रिमोट साहब तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में जो 15 मिनट से कह रहा था मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, होता है ऐसा अक्सर घरों में, और फिर जब मिल जाता है तो सब ऐसे खुश होंगे जैसे घर का कोई कीमती खजाना मिल गया हो। छोटी छोटी यादें जो है ना, ये छोटी छोटी बातें जो है, इन्हीं से तो घर घर लगता है। क्या एक सवाल है आपके लिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो अक्सर गायब रहती है? चाबी, रिमोट, चार्जर, कुछ लोगों के तो मोजे भी गायब हो जाते हैं। या फिर एक खास पेन जो घर में सब इस्तेमाल करते हैं मगर वापस रखना किसी को याद नहीं रहता। और मजे की बात, घर में अगर कोई चीज ढूंढनी हो ना तो सबसे पहले एक दूसरे पर इल्जाम लगता है, तुमने उठाया होगा, नहीं मैंने तो नहीं उठाया, फिर कहाँ गया, मुझे क्या पता। फिर 10 मिनट बाद वही चीज उसी जगह से मिलती है जहां पहले 3 दफा देख चुके हूं, और घर का एक बंदा ऐसा लाजमी कहता है मैंने तो पहले ही कहा था यही होगी। होता है ना ऐसा, और भाई अगर पहले ही कहा था तो फिर हमें भी बता दे।

अच्छा सुनिए, जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर हमें उस वक्त होती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। वक्त भी इन्हीं चीजों में से एक है। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी हकीकत ये होती है कि वक्त नहीं तवज्जो नहीं होती। हम दो दो घंटे मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट किसी अपने के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं मिलता। हम एक पूरी फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन किसी के पास 5 मिनट की बात सुनने का वक्त नहीं होता। हम सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों की जिंदगियों की खबरें जान लेते हैं, लेकिन हमारे साथ बैठे हुए शख्स के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं पूछते। और शायद यही आज के जमाने की एक अजीब हकीकत है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन कभी कभी पहले से ज्यादा डिसकनेक्टेड भी। हमारे पास रबते के जराए तो बहुत सारे हैं, फोन है, मैसेजेस हैं, वीडियो कॉल्स हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी बात औकात है कि इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं बता पाता कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो आज खामोश है, तो जरूरी नहीं कि वो नाराज हो, जरूरी नहीं कि वो बदतमीज हो, जरूरी नहीं कि उसे आपसे शिकायत हो सकता है कि वो थका हुआ हो सकता है कि वो किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहा हो जिसका जिक्र वो किसी से नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी बहुत बड़ा मशवरा देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना पूछ लेना काफी होता है, सब ठीक है? और अगर जवाब आए हाँ ठीक है, तो फौरन ये ना कहें अच्छा तो फिर ठीक है, बल्कि कभी कभी दोबारा पूछ लेना चाहिए, पक्का? शायद दूसरी बार वो बात कह दे जो पहली बार नहीं कह सका। खैर जनाब, चले हल्का सा थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। जाने से पहले मैं आपसे चंद सवाल करूंगा और जवाब आपने दिल में देना है, मुझे बिल्कुल नहीं देना। पहला सवाल, कि अगर आपको अभी इसी वक्त दुनिया के किसी भी शहर में जाने का मौका मिल जाए तो कहां जाएंगे, सोचिएगा। और अगर दूसरा सवाल आपसे करूं, कि अगर आपको एक दिन अपनी उम्र वापस तब्दील करने का मौका मिले तो कौन सी उम्र मुंतखब करेंगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा? बुढ़ापा तो खैर आ गया है। खैर कोई भी एक दिन ऐसा, कोई भी एक ऐसी एज के आप जिसको मुंतखब करना चाहें, सोचिएगा। कोई एक ऐसी चीज अगर आपको दोबारा हासिल करने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी से गुजर चुकी है तो क्या होगी, या फिर अगर आपको एक दिन के लिए किसी भी काम की फिक्र ना हो तो आप वो दिन कैसे गुजारेंगे? कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, सारा दिन वेला, कैसे गुजारेंगे दिन? चलिए एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के आज के दिन को, ये जो आपने सुबह से लेकर अब तक गुजारा है, इसको अगर एक लफ्ज में बयान करें तो वो लफ्ज कौन सा होगा? हिंट देता हूं, आज के दिन को एक लफ्ज में बयान करना है, सुकून, मसरूफियत, थकन, खुशी, परेशानी या उम्मीद। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात यह है कि हर शख्स का जवाब ना मुख्तलिफ ही होगा, और शायद यही इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात है। एक ही शहर में रहने वाले हजारों लोग, एक ही सड़क से गुजरने वाले हजारों लोग, एक ही मौसम देखने वाले हजारों लोग, लेकिन हर एक के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। किसी के लिए आज का दिन कामयाबी का दिन होगा, किसी के लिए आजमाइश का दिन होगा, किसी के लिए नई शुरुआत होगी, और किसी के लिए सिर्फ महज एक दिन जिसे वो गुजारने की कोशिश कर रहा है। हाँ वेल जनाब, अब वक्त इजाजत आन पहुंचा है, और अब एक ऐसे गाने का वक्त है जिसे शायद आप सुनते ही गए हैं। ओ, ये गाना तो मुझे उस वक्त में ले गया, क्योंकि मौसीकी एक अजीब सी ताकत होती है। ये जो गाने हैं ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, बल्कि वो यादें होती हैं। एक धुन शुरू होती है और अचानक आपको कोई पुराना रास्ता याद आ जाता है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना सफर, कोई मौसम, कोई शाम, कोई शादी, कोई कॉलेज, कोई गाड़ी, या फिर घर वाली, या कोई ऐसा शख्स जिसका आपने शायद बरसों से जिक्र ही नहीं किया, लेकिन गाना चला और याद वापस आ गई। यही तो म्यूजिक का कमाल है।
अल्फाज शायद भूल जाएं लेकिन धुन अक्सर याद रह जाती है। और कभी कभार इंसान किसी गाने को इसलिए नहीं सुनता कि उसे गाना पसंद है, बल्कि इसलिए सुनता है क्योंकि उस गाने में उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा छुपा होता है। तो जिस जगह भी है वॉल्यूम जरा से बढ़ा लीजिएगा, और अगर ये गाना आपकी जिंदगी में कोई चीज वापिस लेकर आ गया तो मैं तो यही कहूंगा तो उसे जाने दीजिएगा। कुछ यादें वापिस आती हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए।

मोबाइल जिला में थे आपके साथ आपका मेजबान आरजे उस्मान खान और ये था आज का हमारा ड्राइव टाइम प्रोग्राम। आप जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें, मुस्कुराते रहें और याद रखें रास्ता चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, अगर साथ अच्छी आवाज़ हो तो सफ़र थोड़ा आसान ज़रूर लगता है। ये आवाज़, ये सफ़र और ये साथ, फिर मिलेंगे। तब तक अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान उस्मान खान को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बांट रहे, और बा खुदा वहाँ पर साथ दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी और सांसों ने वफा की, तो कल आपसे दोबारा ठीक 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रेडियो फजा 97.01 FM डैब को ट्यून करने का बेहद शुक्रिया। रेडियो आवाज दिलों का साज, आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: You are saying.
6: We are playing
5: Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल,
2: जबरदस्त हिट्स,
3: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
1: फजान 97.1 FM,
3: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger and better the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
13: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: You are listening to 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: को मत ऐ दोस्तो यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

0: suco, suco!
1: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

0: दुनिया। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आपके दिल की धड़कन, Radio Faza 97.1 FM.
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.